0: न को स्रोत मान्यो जाय छे। टमाटर को सेवन केचप सलाद सब्जी का रूप में करो जाए। टमाटर की खेती का लेना तापमान 20 से 28 डिग्री होनो आवश्यक छे। टमाटर की खेती उपजाऊ बालुई दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक करी जाए। भूमि में जल निकास होनो अति आवश्यक छे। टमाटर की खेती लगभग पूरा साल करी जाए। टमाटर की दो प्रकार की किस्म न रहे, एक तो देशी टमाटर न दूसरा संकर किस्म। देशी टमाटर से भी अच्छी पैदावार हो जाए। देसी किस्म नम छे हिसार अरुण पंजाब छुआरा अरका विकास अरका सौरभ काशी न संकर किस्म नम छे रश्मि रूपाली अजंता पूसा हाइब्रिड दो मंगला वैशाली मैत्री। टमाटर की खेती का लेना तैयारी अच्छे से कर लेनु चाहिए। सबसे पहला टमाटर की रोपाई का लेना खेत का अच्छी तरह से जुताई करी न भुरभुरो बनाई लेवा। बाद में क्यारी न बनाई लेनु चाहिए। खेत का पहला एक गहरी जुताई करी लेनु चाहिए। बाद में खेत में हैरो न कल्टीवेटर से जुताई करी लेनु चाहिए। अंतिम जुताई में 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद न कंपोस्ट खाद का खेत में अच्छी तरह से मिलाई देनु चाहिए। अच्छी पैदावार का लेना 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस न 80 किलोग्राम पोटास की मात्रा देनु चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस न पोटास की पूरी मात्रा खेत में तैयार करता समय मिलाई देनु चाहिए। देसी टमाटर की खेती का लेना देसी किस्म का उन्नतशील बीज दर 200 से 150 ग्राम प्रति एकड़ छे न संकर प्रजाति में 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आवश्यकता रहे। टमाटर की खेती का लेना बीज की बुआई का पहला 2 ग्राम थायरम न 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिश्रण का प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने का बाद बुआई करी देनु चाहिए। जब पौधा एक सप्ताह को हो जाए तब डाइथेनेम 45 न वाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाई न छिड़काव करी देनु चाहिए। नर्सरी में पौध तैयार करना का लेना भूमि तैयार होना पर 0.75 मीटर चौड़ी न आवश्यकता अनुसार 5 से 10 मीटर लंबी न 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी न बनाई लेनु चाहिए। पौध डालना से पहला 5 किलो सड़ी गोबर की खाद प्रति क्यारी 40 ग्राम DAP 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास न 5 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर का हिसाब से डालनु चाहिए। बीज का 3 ग्राम उड़ान 10 ग्राम थीमेट सी प्रति लीटर में घोल बनाई न 3 से 4 दिन पहला क्यारी न में छिड़काव करना सी हानिकारक कीट नष्ट हो जाए। रोपाई लाइन से लाइन न पौधा से पौधा की दूरी में करनु चाहिए। सीमित बढ़वार वाली फसल न में 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखनु चाहिए। असीमित बढ़वार वाली फसल न में 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन न 50 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखनु चाहिए। अब बात करें जल प्रबंधन की तो पौध रोपाई का तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनु चाहिए। बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनु चाहिए। टमाटर का पौधा का विकास की पूरी अवधि का दौरान पर्याप्त नमी की आवश्यकता रहे। पहली सिंचाई रोपाई का तुरंत बाद करनु चाहिए। टमाटर में सिंचाई सबसे पहला सामान्य छे। फूल आवना पर पानी का तनाव चरण फलन पर उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। टमाटर की खेती में लंबा समय तक सूखो रहना से फल फटना की समस्या हो सके। भाई बहनों, देसी टमाटर की तुड़ाई बुआई से 90 से 100 दिन से शुरू करी जाए न हाइब्रिड किस्म नामा 70 से 80 दिन का बाद शुरू करी जाए। आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज। राम राम।
1: टमाटर की खेती विषय पर अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। जानकारी का संकलन और निमाड़ी वाचन किया सीमा कराहे ने। FM 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम होगा सुनहरे पत्र, आपके ईमेल और खतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुबह 7:20 पर। सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुबह 10:05 पर। सुबह 10:35 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 5:30 पर निमाड़ी लोकगीत। शाम 6:00 युवावाणी कार्यक्रम का आकर्षण रहेगा क्रम इंद्रधनुष। फिल्म संगीत शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर किसानवाणी कार्यक्रम में सुनिएगा आज की चर्चा, आज का प्रश्न, आज की बात, भेंटवार्ता, कृषि समाचार, मौसम, मंडी भाव, निमाड़ी लोकगीत, प्रश्न का उत्तर और कल के कार्यक्रम की जानकारी। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह 8:30 पर और सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

तेज गर्मी से बचाव के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई परामर्श के अनुसार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा की वार्ता सुनिएगा सुबह 7 बजे कार्यक्रम विशेष।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।

0: हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, अब से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परामर्श के बारे में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा से जानकारी। प्रसारण समय सुबह 7 बजे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।
1: आज की ताजा खबर।
0: आज की ताजा खबर में पेश है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत खंडवा जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। कल किल्लौद विकासखंड के मिनावा माल गांव में ग्रामीणों ने स्थानीय तालाब की साफ सफाई और गहरीकरण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा की ओर से पंधाना क्षेत्र के ग्राम आरूद में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ग्रामीणों को विशेष लोक अदालत, जागृति योजना, बाल विवाह निषेध कानून और अन्य कल्याणकारी जानकारी सहित कानूनों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत कल बुधवार को पंधाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में

शिविर में 45 लोगों की जांच की गई। इनमें से 15 मरीजों को मोतियाबिंद निशुल्क ऑपरेशन के लिए भेजा गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं से शासकीय योजनाओं के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के 150 और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के 30 पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।

0: खंडवा के माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में पिछले दिनों आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। छात्राओं के लिए आयोजित इस शिविर में ताइक्वांडो सहित अन्य विधाओं की प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मौसम। कल खंडवा सहित पूरे जिले में तेज गर्मी महसूस की गई। आज सुबह से धूल भरी तेज हवाएं चल रही हैं। कल दिन का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ताजा खबरों की संकलनकर्ता श्रुति सोनी, वाचक पंकज लाड़। ये थी आज की ताजा खबरें।
1: आज की ताजा खबर।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: एफएमएनएक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज सुनिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परामर्श के संबंध में खंडवा के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा से तेज गर्मी से बचाव के संबंध में जानकारी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम। जैसे कि आपको पता है, अभी वर्तमान में बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा गर्मी से होने वाली बीमारियों के संबंध में बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। गर्मी से जो होने वाली बीमारियां हैं, इन्हें हम 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं, जिन्हें क्रमशः हीट रैश, हीट क्रैम, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम हीट रैश के बारे में जानते हैं। हीट रैश त्वचा की पसीने की ग्रंथियां बंद होने के कारण होता है, जिससे पसीना बाहर नहीं निकल पाता और हमारे शरीर पर पीठ में, हाथ में, सीने में खुजली होती है और खुजाने की वजह से त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने, चुभन वाले, जलन वाले हो जाते हैं। इनसे बचाव के लिए हमें सूती और ढीले

कपड़े पहनना चाहिए, त्वचा को साफ और सूखा रखना चाहिए। ज्यादा पसीने वाली जगहों पर हमें पाउडर या प्रिकली हीट पाउडर का उपयोग करना चाहिए। उपचार के लिए हमें ठंडी या सूखी जगह पर रहना चाहिए। जो प्रिकली हीट पाउडर आता है, घमोरिया का पाउडर जिसे हम कहते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए और ठंडे पानी से स्नान करना इसका उपचार है। नंबर 2, हीट क्रैम्प या गर्मी की ऐठन होती है। यह तेज गर्मी में भारी शारीरिक काम करने से पसीने के माध्यम से शरीर में नमक और पानी की कमी के कारण होता है। इसके जो प्रमुख लक्षण है उसमें जो हमारे पैरों की मांसपेशियों में दर्दनाक ऐठन या मरोड़ होती है, जो कि पेट, पैर या हाथों में हो सकती है, और भारी पसीना निकलने की वजह से ये होता है। बचाव या उपचार के लिए हमें तुरंत छायादार स्थान पर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसके अलावा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखना है, यानी कि हमें ORS या इलेक्ट्रॉल या नींबू शक्कर का पानी मिलाकर पीना चाहिए। यदि ऐठन 1 घंटे से ज्यादा होती है तो हमें फिर चिकित्सकीय परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। नंबर 3 जो होता है हमारा, वो हीट एग्जॉशन या गर्मी की वजह से होने वाली थकावट है। यह शरीर की गर्मी को शांत करने की क्षमता कम होने से होता है, जो कि

0: की क्षमता कम होने से होता है, जो कि हीट स्ट्रोक का पूर्व संकेत है। इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी होना, चक्कर आना, जी मतलाना, सिर दर्द, त्वचा का रंग है वो हल्का पीला होना और त्वचा चिपचिपी होना और नाड़ी तेज चलना होते हैं। इसके उपचार के लिए व्यक्ति को तुरंत हमें ठंडी जगह पर या कूलर की हवा में या एसी में ले जाना है, कपड़ों को ढीला कर दें और व्यक्ति को आराम की स्थिति में लिटा दें, ठंडे पानी या इलेक्ट्रोल का घोल पिलाएं मरीज को, शरीर पर ठंडे पानी छिड़कें या गीले कपड़े से पहुंचना चाहिए। अगला जो सबसे खतरनाक बीमारी है गर्मी में होने वाली, जिसे हम हीट स्ट्रोक या लू लगने के नाम से जानते हैं, यह सबसे गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाता है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार, त्वचा लाल, गर्म और सूखी होना, भ्रम या मानसिक स्थिति में बदलाव, अस्पष्ट वाणी, बेहोशी होना या दौरे पड़ना इसके प्रमुख लक्षण हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाना है और उनके कपड़े ढीले करके उन्हें लिटा देना है। तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाकर हमें बुलाना है और एम्बुलेंस अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आप जैसे ही फोन करेंगे वैसे ही एम्बुलेंस आके और हॉस्पिटल पेशेंट को छोड़ देगी। यदि हमारे पास आइस पैक उपलब्ध है तो उसे हमें गर्दन, बगल और कमर के पास रख कर पेशेंट को ठंडाई उपलब्ध करवाना है। गीली चादर से शरीर को लपेट दें और पंखा चला दें। यदि व्यक्ति सचेत अवस्था में है तो उसे पानी पिलाएं और इलेक्ट्रोल या ओआरएस तुरंत दें। इसके अलावा अन्य जो सामान्य लक्षण हैं जिनसे गर्मी के सीजन में हमें अपने आप को बचाना चाहिए या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें एक तो जो पीक टाइम होता है गर्मी का, दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक, उसमें बाहर निकलने से बचना है। घर के अंदर या छायादार स्थान पर ही रहना है। यदि काम के लिए अति आवश्यक है कि हमें बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो हम सुबह या शाम के समय ही बाहर जाएं। आरामदायक सूती और हल्के रंग के पतले और ढीले कपड़े पहने। बाहर जाने पर छाता, टोपी, तौलिया या गमछे का प्रयोग करें और अपने सिर और कान को ढांक कर रखें। अधिक पानी वाले मौसमी फल, सब्जियां जैसे तरबूज, खीरा, संतरा आदि का सेवन करना चाहिए। हमेशा पानी और नमकीन पेय जैसे लस्सी, नींबू पानी, ओआरएस का घोल पिए। ठंडे पानी से अक्सर स्नान करें। कमरे का तापमान कम रखने के लिए पर्दा, पंखा, कूलर आदि का उपयोग हमें करना चाहिए। लू लगने की स्थिति में ठंडा वातावरण बनाकर रखें। ठंडे पानी से शरीर को स्पंजिंग करें। कपड़े में लपेट कर बर्फ लगाकर हमें सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें बिना जूते चप्पल पहने बाहर नहीं निकलना है। हाइड्रेटेड कार्बोनेटेड जो ड्रिंक हैं या अधिक शक्कर वाले पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करने से बचना चाहिए। कार्बोनेटेड कैफीन युक्त पदार्थ हैं जैसे चाय, कॉफी, इनका सेवन हमें गर्मी के मौसम में कम करना चाहिए। अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचना चाहिए। बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। बच्चों और पालतू जानवरों को बंद वाहनों में नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुछ प्रमुख सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर हम लोग गर्मी की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे तेज गर्मी से बचाव के संबंध में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के खंडवा जिले के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा से जानकारी। ये जानकारी विशेष कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित की जा रही थी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किश्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान भाई बहनों के हित में सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले 5 महीनों में श्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दूसरी मुलाकात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण की भी बातचीत इन मुद्दों में शामिल होगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगावनी से जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक

0: 35 किश्तें जारी हो चुकी हैं और कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
1: भूलती है हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माता बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू का प्रकोप बने रहने की संभावना जताई है। आज ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री डेका यहां आयोजित आदि उत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित कैट ऐप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर रायसेन जिले में पुलिस लाइन परिसर में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2025-26 के सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में 100% सफलता प्राप्त की है। वहीं झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा ग्राम साड में वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों से संवाद के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किस्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सुनहरे पत्र।

0: सुबह से ही खंडवा में तेज गर्मी की दस्तक, धूल भरी आंधी, और ऐसे वातावरण में खंडवा में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक खतों की यानी ईमेल्स की एक आंधी जैसी आई हुई है।
1: बिल्कुल।
0: और आज के ऐसे सुनहरे पल कार्यक्रम के, सुनहरे पत्र कार्यक्रम के साथ मैं पंकज लाड़
1: और मैं चिन्मय दीक्षित
0: सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार चिन्मय जी, आज बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास जो मेल आए हैं,
1: हाँ,
0: इनमें नए श्रोताओं के नाम दिख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे दिख रहा है कई एक नए श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं। तो पंकज जी, क्यों ना आज का शुभारंभ इन श्रोताओं के स्वागत के साथ और इन्होंने क्या हमें लिखकर बताया है
0: जी,
1: उन पत्रों के साथ शुरू किया जाए।
0: वैसे इन पत्रों को देखने से लगता तो ऐसा है कि मजमून लगभग एक जैसा है।
1: हाँ हाँ।
0: फिर भी हम इन श्रोताओं के खतों का, ईमेल्स का स्वागत करते हैं, और ये सारे युवा श्रोता हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब जो नई पीढ़ी है जो इस समय महाविद्यालय में पढ़ रही है।
1: हाँ हाँ।
0: उस पीढ़ी ने लिखा है और लगभग उसी शासकीय अंदाज में लिखा है जैसे कि महाविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे और
1: सीखते थे। क्या बात है। तो जरूर अब भाषणा शुरू करें।
0: माननीय महोदय, महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपको आकाशवाणी खंडवा केंद्र से प्रसारित होने वाले एक विशेष रेडियो कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराना चाहती हूं। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप तथा FM बैंड 101.2 MHz पर दिनांक 4 मई 2026 सोमवार को प्रातः 7 बजे प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी रश्मि मसानी के भाषण के संपादित अंश प्रस्तुत किए गए।
1: हाँ, बहुत बढ़िया था ये कार्यक्रम।
0: इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनय जैन रहे और प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर सीमा मंडलोई द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संकलन एवं संपादन पंकज कुमार लाड़ द्वारा किया गया।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: यह कार्यक्रम जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक रहा।
1: यह कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक था और कई विभिन्न पहलुओं पर ये जो BA द्वितीय वर्ष की छात्रा थी उन्होंने उन पहलुओं को छुआ था और वास्तव में काबिले तारीफ उनका ये संभाषण था।
0: अब आप ये तो पूछ लीजिए, ईमेल किसका था?
1: ये ईमेल लिखने वाले श्रोता कौन है?
0: वैसे ही लिखा, भवदीय माणिकलाल। बस
1: स्वागत है भाई माणिकलाल जी, आकाशवाणी के श्रोता परिवार में आपका स्वागत है तहे दिल से।
0: अगला भी इसी तरह का है, सादर राय सिंह गौतम।
1: हाँ।
0: इन्होंने भी इसी कार्यक्रम के संबंध में प्रशंसा की है और एक अच्छी बात लिखी है कि छात्रा रश्मि मसानी द्वारा जल अपर्दन की समस्या और उसके प्रभाव पर दिया गया भाषण जानकारी पूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाला था। विशेष रूप से जल अपर्दन के कारणों और उसके प्रभावी उपायों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया था। इस कार्यक्रम के सफल प्रस्तुतिकरण के लिए और इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए फिर इन्होंने वहां के प्राचार्य डॉक्टर विनय जैन और प्रतियोगिता प्रभारी डॉक्टर सीमा मंडलोई सहित मुझे यानी पंकज लाड़ को धन्यवाद दिया और उम्मीद की है कि ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे, इससे समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: अवश्य बंधुवर, जरूर जारी रहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप जैसे युवा श्रोता और ऐसे युवा जो वक्ता हैं वो हमारे कार्यक्रमों में निरंतर रूप से अनवरत आपके समक्ष आते रहें।
0: विकास आर्यन भवदीय, ये भी इसी से संबंधित ईमेल है।
1: अच्छा।
0: लगभग यही बात इसमें लिखी है लेकिन उन्होंने एक अलग बात कही है कि जो इस विषय का प्रस्तुतिकरण था वो गहराई से प्रभावित कर गया।
1: धन्यवाद आपको, प्रस्तुतिकरण के गहराइयों तक आप पहुंचे हैं और उसको समझ रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तीनों ही श्रोताओं का तहे दिल से आकाशवाणी के श्रोता मित्र परिवार में स्वागत है। आप हमें आगे भी अन्य कार्यक्रमों के माध्यम

0: से सुनते रहें, हमसे जुड़े रहें, ऐसी हमारी अपेक्षा है।
1: अगला जो ईमेल है वो 4-5 लोगों ने मिलकर लिखा है।
0: हाँ।
1: करण, नीलकंठ, अरुण, राजेश, धर्मेंद्र, करीना, नंदिनी, ये हैं दुर्गा निवास हैदरपुर गांव के।
0: अच्छा।
1: अब हैदरपुर गांव दो हैं, एक बुरहानपुर जिले में भी है और एक खंडवा जिले में भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खंडवा जिले के हैं।
0: अच्छा।
1: और इन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए कहा है कि भविष्य में भी इस प्रकार के उपयोगी कार्यक्रमों की अपेक्षा रहेगी, ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रस्तुत किया करें और कार्यक्रम की प्रस्तुति सरल, स्पष्ट और ज्ञानवर्धक रही, जिसने समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। इस तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की हमेशा अपेक्षा रहेगी। हम तीनों के नाम लिखे हैं।
0: धन्यवाद आपका इस इतने अच्छे से सारगर्भित पत्र भेजने के लिए और ये बताने के लिए कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में हमारे युवा साथियों ने, श्रोताओं ने हमें न केवल अपनी भावनाओं से अवगत कराया बल्कि अपनी अपेक्षाओं से भी अवगत कराया। बहुत अच्छा लगा हमें। आगे भी आपके खतों की हमें प्रतीक्षा रहेगी बंधु।
1: इस प्रतियोगिता में ये सर्वश्रेष्ठ छात्रा रही थी।
0: अच्छा।
1: और खास बात ये थी, क्यों ये पसंद आई होगी, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में जो स्थानीय परिस्थितियां हैं इस पर पर्यावरण के साथ में सारी बात रखी थी और इसमें अलग अलग महान विद्वानों के जो उदाहरण थे, विचार थे, वो उन्होंने उनके नाम से वैसे ही रखे थे। तो निश्चित तौर पर हम अपने महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, जो युवा साथी हैं, इनसे अपेक्षा करते हैं कि यदि इस तरह की कोई प्रस्तुति वो दे रहे हैं या इस तरह का कोई कार्यक्रम उनके महाविद्यालय में कहीं आयोजित हो रहा है तो एक बार सूचित जरूर कर दें ताकि ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को हम प्रसारित कर सकें।
0: अवश्य करें। और इसी के साथ हम उन शिक्षकों को भी साधुवाद देते हैं जो इतने अच्छे छात्रों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं।
1: जी, ये अगला ईमेल है सिविल लाइन वत्सला विहार खंडवा से।
0: हाँ।
1: ये सामान्य तौर पर नियमित फरमाइश नहीं भेजते हैं। श्रीमती कल्पना मगरे, मनोज कुमार मगरे, वंशिका मगरे और आयुषी मगरे।
0: अच्छा, क्या लिखा है?
1: 22-23 साल से आकाशवाणी खंडवा की परिवार सहित नियमित श्रोता हैं और सुन रहे हैं। सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। किसानवाणी, युवाणी, एक ही फिल्म से, नारी जगत, सुनहरे पल, खासकर पत्र मित्र यानी सुनहरे पत्र कार्यक्रम की बात कर रहे हैं और ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा। हमारा आकाशवाणी खंडवा के प्रति प्रेम निरंतर पल्लवित हो रहा है। आकाशवाणी देखने की इच्छा है।
0: अच्छा।
1: मैं किस तरह से कार्यक्रम में शामिल हो सकती हूँ, प्लीज बताएं। फोन लगाने के लिए मोबाइल नंबर और समय दीजिए।
0: मोबाइल नंबर तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकता हूँ, परंतु आप हमारे स्टूडियोज में किसी भी कार्य दिवस के दिन उपस्थित हो सकते हैं। हमारा एक नियमित कार्यक्रम होता है हमारे श्रोता, उस क्रम में भी आपसे संपर्क किया जा सकता है। आपका ईमेल हमें मिल चुका है तो हम ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने का प्रयत्न करेंगे।
1: हम यहाँ से भी ये अनुरोध कर सकते हैं कि हमारे श्रोता कार्यक्रम को यदि वो प्रायोजित कराना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के लिए कोई विज्ञापन भी देना चाहते हैं तो वो अपने विचार आकर व्यक्त कर सकते हैं, उस कार्यक्रम को प्रायोजित भी कर सकते हैं।
0: और इन सभी चीज़ों के लिए आप कार्य दिवस में जो कार्यालयीन अवधि होती है उसमें आकर कभी भी मिल सकते हैं।
1: अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से।
0: जी,
1: क्या बात है। लगभग 2 महीने से देखा जा रहा है खंडवा के कार्यक्रम में नियत समय पर मेल कर देते हैं तो भी शामिल नहीं होता है। क्या कोई निश्चित अवधि है मेल करने की? यदि निर्धारित समय है तो अवश्य अवगत कराएं। आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, प्रशंसा लिखिए। आपके मित्र गीत कार्यक्रम को व्हाट्सएप आधारित कर दें, एक सुझाव दिया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो ईमेल नहीं करते या ईमेल नहीं करना आता, उनके लिए ये अवसर रहेगा। और ईमेल में दोहराव होता है, ध्यान दीजिएगा।
0: ईमेल में दोहराव तो होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप इतनी दूर से हमें सुनकर पत्र लिख रहे हैं ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है। हम कई बार अपने कार्यक्रम में बता चुके हैं कि किस अवधि तक के पत्र हमें प्राप्त होते हैं तो हम उन्हें शामिल करते हैं। कार्यक्रम के प्रसारण से एक दिन पूर्व तक प्राप्त जितने भी ईमेल होते हैं वो हम ज़रूर शामिल करने का प्रयत्न करते हैं। उसकी अवधि भी लगभग करीब करीब 12 बजे या 2 बजे तक के बीच की रहती है, तो आप प्रयत्न करें कि इसके पहले पहले आपका ईमेल हमें प्राप्त हो जाए।
1: बड़ाबम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे।
0: जी,
1: पेशकर्ता जी को सादर नमस्कार। किसान वाणी में स्मृति बरोले लिखा है इन्होंने, वो हैं स्मिता बरोले द्वारा कृषि विभाग की अग्रवाल मैडम जी से वार्ता सुनी। खेती में किसान महिलाओं का योगदान, सरकार द्वारा योजनाओं की उपयुक्त जानकारी दी गई ये सुनी। नारी जगत में मां दिवस के बारे में श्रद्धा गंगराड़े जी की ज्योति जी द्वारा प्रेरणादायक जानकारी सुनी। गर्मी में लाभदायक टिप्स और बहुत सारे पसंद आए। पेशकश मोना दफ्तरी जी की थी। और युवाणी में इन्हीं के द्वारा डॉक्टर सीमा दूधे से बातचीत प्रेरणादायक शिक्षित लगी। सभी पेशकर्ता जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
0: बहुत धन्यवाद।
1: संजय मार्कंडे, ममता मार्कंडे।

0: मार्कंडेय दंपति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां पसंद आई, और आपने उनका जिक्र भी किया कि किस कार्यक्रम की कौन सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी।
1: अगला ईमेल जो है वो लगभग मिलते जुलते नाम से मेरे पास इसी तरह के 3 ईमेल हैं।
0: तो एक काम करते हैं कि इन सभी जो श्रोता हैं उन सबके नाम एक साथ लेते हुए और इस ईमेल का वाचन कर देते हैं।
1: असली बात यह है कि ये अलग अलग जगहों से उसी नाम से लिखते हैं।
0: अच्छा
1: जी, जैसे पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, निशा परवीन और असमनाज अंसारी, फिर बिहार स्टेट बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फिर राजवली अंसारी और फातिमा अंसारी।
0: अच्छा।
1: फिर बिहार स्टेट बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, राजवली अंसारी, राज अजनबी अंसारी और फातिमा अंसारी। फिर इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी और निशा अंसारी और वली अंसारी।
0: देखिए, ये संभव है कि ये अलग अलग श्रोता हों, उनके नाम एक हों, पर अगर ईमेल का कंटेंट समान है तो एक ही पत्र पढ़ दीजिए, अन्यथा अलग अलग हैं तो जरूर उनका वाचन करें।
1: जो अलग है वो मैं अलग अलग करके पढ़ देता हूँ
0: जी।
1: सुनहरे पत्र 7 मई का सुनकर दिल बाग बाग हो गया, आपको और मनीष कुलकर्णी जी को बधाई दी है, और 12 मई को प्रसारित आपके मित्र गीत कार्यक्रम भी अच्छा लगा, और कीर्ति जी ने जो बाजीराव मस्तानी की एक ही फिल्म से कहानी सुनाई थी वो अच्छी लगी। दूसरे पत्र में इन्होंने लिखा है कि 7 मई का वही सुनहरे पत्र कार्यक्रम, उसकी प्रशंसा की आपकी और मनीष कुलकर्णी जी की, हाँ एक बात अच्छी लिखी है मेरे लिए, 30 अप्रैल 2026 को प्रसारित आपकी पसंद की प्रस्तुति लाजवाब रही, पंकज जी को बधाई। और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल और पत्र शामिल किए गए हैं, इसके लिए आपको एक बार फिर से बधाई। हाँ, खबर पूछ रहे हैं किसी की?
0: हाँ,
1: हमारी नियमित साथी रही हैं राखी गुप्ता जी, इनकी कोई कोच खबर हो तो बता।
0: बस बहुत ही जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगी है, और इतने सारे लोगों का नाम देकर आपने उनका आज जो है वो एक दिन शुभ कर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद।
1: 4, 5 और 12 मई को आपके मित्र गीत कार्यक्रम दिल को छू गया, क्रमशः कीर्ति गोखले, पंकज लाड़, मनीष कुलकर्णी जी को बधाई, परवीन सुल्ताना को सुगम संगीत में सुनकर दिल बाग बाग हो गया, और 6 मई को कीर्ति जी द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म से बाजीराव मस्तानी की कहानी पसंद आई।
0: धन्यवाद धन्यवाद, परवीन सुल्ताना जी को सुनना हमारे लिए भी बड़ा सुखद अनुभव रहा, तो इस बारे में तो हम भी आपके साथ सरोकार रखते हैं। और क्या लिखा हुआ है?
1: और ये अगला जो ईमेल है, छोटी बलिया करजत से आमना अंसारी, जुवेदा, नेहा अंसारी और इनके बेगूसराय से भी कुछ मित्र हैं, इकबाल मोगा और अहमद मोगा। 7 मई का कार्यक्रम सुनने को मिला, आपको और मनीष कुलकर्णी जी को बधाई दी है। मोबाइल ऐप पर कभी कभी अचानक ऑफलाइन हो जाता है, वजह पता नहीं चल पाती है, आपकी पसंद कार्यक्रम लाजवाब रहा, फिर मुझे यानी पंकज लाड़ को कोटि कोटि बधाई दी है और पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। 18 अप्रैल और 12 मई को प्रसारित आपके मित्र गीत कर्णप्रिय लगा, मूले जी और मनीष कुलकर्णी जी को शुभकामनाएं दी हैं।
0: धन्यवाद आपको, हमें पूरा यकीन है कि हमारे प्रस्तोता जो है वो खुश हो जाएंगे अपना नाम आपके पत्र में पाकर। साथ साथ आपने जो प्रश्न किया है कि न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये क्यों कई बार कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो जाता है, इसका हम पहले भी कई बार आपको उत्तर दे चुके हैं, पुनः देते हैं। बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से बीएसएनएल की जो लाइन है उसमें व्यवधान आ जाता है, तो हमारे यहाँ से उसका प्रसारण यथा शीघ्र जैसा हो रहा है वैसा किया जाता है, किंतु ट्रांसमिशन में कई बार व्यवधान आने की वजह से ये कुछ पलों के लिए, कुछ देर के लिए रुक जाता है, बाधित हो जाती है एप्लीकेशन।
1: चांदनी चौक, गंडई, पंडरिया, छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। अब बड़ी शिकायत भेजी ली है इन्होंने, बड़ा पत्र भेजा है,
0: शिकायत का
1: निवेदन करना चाहेंगे कि पत्र को पूरा पढ़ लिया करें। फरमाइशी कार्यक्रम के लिए कोई भी ईमेल पत्र भेज दिया करते हैं जिससे उतना समय नहीं लगता, लेकिन सुनहरे पत्र के लिए समय लगता है, एक एक शब्द का चयन करना पड़ता है, कहीं आधा अधूरा पढ़ दिया जाता तो मन काफी दुखी होता है। पिछले सप्ताह आपने हमारे पत्र को अधूरा पढ़ दिया, जबकि लंबे अंतराल के बाद हमने आदरणीय भाई चिन्मय जी और मनीष कुलकर्णी जी की आवाज़ सुनी, सुनहरे पत्र कार्यक्रम में सुनने को मिला। 7 तारीख को, गुरुवार को, मनीष कुलकर्णी जी अधिक से अधिक श्रोताओं के ईमेल शामिल कर हमें अनुग्रहित किया, और मनीष शर्मा जी, राखी जैन जी, भूपेश पालन जी, आरती शर्मा, कीर्ति गोखले और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को इन्होंने बधाई दी है अपने अपनी प्रस्तुतियों के लिए।
0: बहुत धन्यवाद, हमारे सभी उद्घोषकों को खुशी होगी आपने उनको जो है बधाई दी है। साथ साथ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पत्र की जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो पूरा पढ़ने लगेंगे, उसका लब्बुलुबाब ना पढ़ के, सार ना पढ़ के, तो क्या होगा कि अन्य जो हमारे श्रोता हैं उनके लिखे पत्र छूट जाएंगे। ऐसी अवस्था में सबके साथ न्याय हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि जहाँ तक संभव हो पूरा पत्र पढ़ा जाए। जब नहीं ये संभव हो सकता है और बहुत ही बड़ा पत्र होता है, तो फिर हम उसमें से उसकी मूल बात निकाल कर सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
1: ये बात अभी आपने कही कि सारांश किया जाए, एक श्रोता है, 2 वाक्य का पत्र का ईमेल है।
0: अरे अवश्य।
1: हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे,

0: शिरटे सांगली महाराष्ट्र से।
1: हाँ।
0: शनिवार 9 मई को प्रसारित स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम चेतना उपयुक्त लगा, गर्भावस्था और डायबिटीज विषय पर डॉक्टर रौनक जी ने जानकारी दी, लाभप्रद थी, धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपका, आपने स्पष्ट शब्दों में बताया आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद आया, जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
0: अब ये दो तीन तरह के श्रोता हैं इसमें, अलग अलग जगहों से हमें ईमेल भेजते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ही जगह से भेजा है, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद शाकिब पवार। दीवाल के हमारे श्रोता हैं शंकरलाल गंगराड़े अहमदपुर खैगांव के, कैलाश फुलमाली और मोहम्मद हसनैन पवार खंडवा के हैं। इनका एक संयुक्त ईमेल मिला है,
1: बहुत बढ़िया।
0: मनीष कुलकर्णी जी और आपको इन्होंने बधाई दी है पिछले सुनहरे पत्र कार्यक्रम के लिए, साहित्यिक अंदाज में आपने उत्तर दिए थे,
1: अच्छा
0: तो अच्छे लगे। रविवार को फोन करे गीत सुने मनीष कुलकर्णी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया लाजवाब प्रस्तुति के लिए, उनको भी बधाई। सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम अच्छा लगा। मंगलवार को आपकी मीति गीत लोकरंजनी अच्छा लगा। बुधवार का एक ही फिल्म से अच्छा लगा। नाजमा परवीन जी को बधाई, इन्होंने मेरे महबूब फिल्म से समा बांध दिया।
1: बिल्कुल।
0: और यूथ चॉइस फिर से शुरू किया जाए युवाणी कार्यक्रम में, ऐसा इनका अनुरोध है। एक फरमाइश भी भेजिए आपके लिए।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: समझ गए किस चीज की होगी।
1: हाँ, जरूर।
0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में देवानंद और हेमा मालिनी अभिनीत जॉनी मेरा नाम फिल्म को शामिल किया जाए।
1: हमने जॉनी मेरा नाम अभी विगत कुछ महीनों के भीतर सुनाई है, परंतु फिर से सुनाया जा सकता है क्योंकि करीब करीब एक वर्ष का समय बीत जाएगा इस फिल्म को सूची में क्रम में आने में, तो हमने सूची में शामिल कर लिया है। हमें अच्छा लगा आप सबने मिलकर हमें अपने पत्र को भेजा है और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई है।
0: डायबिटीज यानी मधुमेह और गर्भावस्था पर डॉक्टर रौनक की जानकारी इनको भी अच्छी लगी है। गुड मॉर्निंग खंडवा पसंद आया। मंगलवार का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मनीषा शिवांकर की वार्ता सुनी, वो भी अच्छी लगी। दीपक पगारे मोहना का विविधा कार्यक्रम में काव्य पाठ सुना अच्छा लगा। मेरे महबूब की गीत और स्टोरी भी अच्छी लगी। अब इन्होंने फिरदौस जी को धन्यवाद दिया है, जबकि शुक्रिया नाजमा परवीन जी का है। और ये श्रोता हैं सनावद मध्य प्रदेश के अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना और खंडवा से भी श्रोता इसी में शामिल किए हैं, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, चकता।
1: क्या बात है, आप सभी का इस पत्र के लिए हृदय तल से धन्यवाद।
0: क्या बात है, हृदय तल। सुनहरे पत्र कार्यक्रम के अतिथियों को सादर नमस्ते। और क्या बात है, गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के समीक्षात्मक ईमेल पत्रों को यथासंभव शामिल कर श्रोताओं के सुझाव, शिकायत और प्रशंसाओं को कार्यक्रम में जगह दी, इसके लिए आपका और मनीष कुलकर्णी का धन्यवाद किया है। आपकी पसंद कार्यक्रम अच्छा लगा इनको, और गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम, लोकरंजनी कार्यक्रम, साथ में नाजमा परवीन जी की मेरे महबूब फिल्म की कहानी और गीत अच्छे लगे, फिर फरमाइश आ गई आपके लिए।
1: हाँ हाँ बताएं।
0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन अभिनीत राम बलराम फिल्म की कहानी और गीत सुनवाए जाएं।
1: अच्छा, ये इस फिल्म का जिक्र नहीं हुआ है और ये बहुत ही लगभग भुला दी गई सी फिल्म है, तो
0: श्रोता
1: जो है ये कौन है ये भी बताएं।
0: जामली कला खंडवा से माणक चंद राठौर, पुष्पा बाई राठौर और छेगा देवी खंडवा से अशोक वाघे और वंदना वाघे।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र और सुझाव, हमने आपका नोट कर लिया है, तो इस पत्र के लिए और सुझाव के लिए फिर से धन्यवाद।
0: फिर एक सुझाव नोट कर लीजिए। हाँ, फिर एक फरमाइश है फिल्म की। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फारूक शेख और दीप्ति नवल अभिनीत फिल्म चश्मे बद्दूर के गीत और कहानी सुनवाई जाए। साथ ही आपको और कुलकर्णी जी को धन्यवाद दिया है पिछले कार्यक्रम के लिए, सुनहरे पत्र के लिए, और नाजमा जी को बधाई दी है, फोन करे गीत सुने कार्यक्रम भी अच्छा लगा और यूथ चॉइस फिर से शुरू करने, लगभग वही मजमून है। ताज रेडियो श्रोता संघ कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, हिना सईद खोकर, अलमाज बानो पवार, सबीना और जहीर पवार, एक ही परिवार के लोग हैं ये सब।
1: अच्छा
0: जी,
1: आप सभी का इस पत्र के लिए धन्यवाद। यूथ चॉइस का एक और हमारे श्रोता ने जिक्र किया था, हम इस क्रम को जल्दी ही आरंभ करेंगे युवाणी कार्यक्रम में, उसका जो पूरा मजमून होता है वो समझ के और आपकी इस फरमाइश को भी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।
0: क्या बात है, आपने मन की बात पूरी करने का वादा कर दिया है अब तो। निमाड़ क्षेत्र की सुरीली आवाज आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सोनेर पत्र के मेजबान साथियों को नमस्कार, और आप हमारे पत्र और ईमेल शामिल करते हैं इसके लिए आपको धन्यवाद। आपकी और मनीष कुलकर्णी जी की प्रशंसा की है और कहा है कि इन्होंने चार चांद लगा दिए, आपकी पसंद कार्यक्रम पेशकश लाजवाब रही। मनीष कुलकर्णी जी को धन्यवाद। मेरे महबूब फिल्म की कहानी सुनकर दिल झूम उठा। नाजमा परवीन जी को बधाई। गुड मॉर्निंग खंडवा, सुनहरे पल, सभी कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं और ये अच्छे लगते हैं, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, फिर फरमाइश आ गई है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म दोस्ताना की कहानी और गीत सुनवाएं। ये है बाजार फैल छेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनिस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद जुनेद मोहाल, मोहम्मद रियाज मोहाल और मोहम्मद रिजवान मोहाल।
1: जरूर, आपकी ये फरमाइश हमने नोट कर ली है और ये

0: कहानी भी क्रमवार सिलसिले में आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। तो तब तक के लिए कार्यक्रम जरूर सुनते रहिएगा।
1: रामगंज खंडवा के हमारे श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना, शिवी, सलोनी, इचू और लुसियान। सुबह सवेरे का पहला प्रणाम स्वीकारें।
0: नमस्कार आपको।
1: सप्ताह कार्यक्रम कम सुने माफी चाहता हूँ, इस सप्ताह कार्यक्रम कम सुने ऐसा लिखना चाहते होंगे। कीर्ति गोखले जी को उत्तर भारत की सैर करा दी और गीतों का चयन बहुत शानदार था। रागरंग में पराग गोखले और कीर्ति गोखले जी ने सुंदर और रागों से संबंधित गीतों से परिचय कराया। मेरे हुजूर फिल्म की कहानी संवाद पटकथा मेरे हुजूर मेरे महबूब हाँ नाजमा जी को बधाई दे रहे हैं। ये विजय महोबिया रामगंज खंडवा।
0: धन्यवाद विजय जी। और कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, पर हम आपकी भावनाओं से अवगत हैं, आप क्या कहना चाहते हैं वो हम समझ गए और पत्र लिखने के लिए आपका आभार।
1: दादाजी धुनी वाले मार्ग कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हस्सू बाबा, मोइन, छोटू पवार, मोहम्मद फाजिल और जामा मस्जिद रोड भीकन गांव से साफिया, अरहान खोकर और आयान खोकर। सुनहरे पत्र कार्यक्रम की पिछली प्रस्तुति के लिए आपको और मनीष जी को धन्यवाद दे रहे हैं। कहानी एक ही फिल्म से अच्छी लगी, नाजमा परवीन जी को दिल की गहराइयों से बधाई। और एक ही फिल्म से कहानी में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा और परवीन बाबी अभिनीत फिल्म याद आ गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सुहाग के गीत सुनवाने का अनुरोध किया है।
0: क्या बात है। मन तो हमारा हो रहा है कि उसका जो प्रसिद्ध जो डायलॉग है वो आपके समक्ष रखा जाए, परंतु ये ना अभी समय है। तो इस आपके सुझाव को हमने नोट कर लिया है, जरूर आपके सामने ये प्रस्तुति भी जल्दी ही आएगी।
1: 8 मई को रागरंग के अंतर्गत मालकोस के बारे में जानने सुनने को मिला, पराग गोखले और कीर्ति गोखले जी को धन्यवाद। 9 मई को चेतना के अंतर्गत स्वास्थ्य भेंटवार्ता, गर्भावस्था में डायबिटीज यानी मधुमेह पर रौनक जी की बातचीत लाभदायक लगी। मुलाकात के अंतर्गत डॉक्टर सीमा से मोना दफ्तरी की बातचीत रोचक लगी। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सनावत शहर के कविवर भाई दीपक पगारे जी की निमाड़ी काव्य रचनाओं ने हमारा मन मोह लिया। और 13 मई को एक ही फिल्म से मैं मेरे महबूब की कहानी सुनकर मजा आ गया। जल संरक्षण करें, जल है तो कल है, स्वच्छता ही सेवा है। शुक्रिया प्रवीण श्रीमाली।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जल है तो कल है। और प्रवीण श्रीमाली जी आपका इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम था जो मोना दफ्तरी जी ने डॉक्टर सीमा सुटे के साथ प्रस्तुत किया था, ये विशेष कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, है ना। तो इस विविधा के अंतर्गत नहीं था वो, परंतु आपने उसका आपको वो कार्यक्रम की प्रस्तुति पसंद है ये जानकर हमें और मुझे पूरा यकीन है मोना जी को भी बहुत खुशी होगी।
1: विविधा में इन्होंने लिखा दीपक पगारे की रिमाड़ी काव्य रचना है।
0: अच्छा हाँ,
1: मोहना के कवि हैं दीपक पगारे जी।
0: विविधा के अंतर्गत हमने पगारे जी की काव्य रचनाएं प्रस्तुत की थी
1: जी।
0: तो चलिए ठीक है।
1: अगला ईमेल जो है वो कहारवाड़ी मोहल्ला ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे,
0: हाँ?
1: राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से।
0: अच्छा,
1: इसी परिवार का वही जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से ज्योति, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल का भी ईमेल है।
0: हाँ?
1: और दोनों का लगभग एक ही जैसा मजमून है। 13 मई बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर अच्छा लगा, आपकी मिति गीत भी इस दिन का अच्छा लगा और नाजमा परवीन जी को बधाई। कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे लगते हैं। सूरज कुमार ढाक से दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ, रेडियो मेरा जीवन साथी है। सुबह शाम आकाशवाणी से एक घड़ी का समय सुनकर ही मैं गांव में रोटी लेने जाता हूँ। मेरे दोस्त दुर्गेश नागनपुरे मेरी बहुत मदद करते हैं। 13 मई के दिन बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत ये मतलब बहुत हर्ष की बात है कि आपके मित्र जो हैं वो आपके साथ एकदम परछाई की तरह आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन में ऐसे मित्रों का होना ऊपर वाले की कृपा का एक परिचायक है। बहुत बहुत आप दोनों को बधाइयाँ और आपका पत्र पाकर हमें बहुत हर्ष होता है।
1: तो इनकी बात सुनकर दोस्ती फिल्म की वो दोस्ती याद आ गई
0: यकीनन।
1: और निश्चित तौर पर हम इनके लिए लाभदायक है कि हम समय बताते तो इनको घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि आपको समय
0: आपकी दोस्ती हमारे लिए प्रेरणास्पद है और ये यथावत बनी रहे ऐसी हमारी दुआएं हैं। अगला पत्र किन्होंने
1: भेजा? पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह।
0: अच्छा
1: राधे कृष्णा, 7 मई को 7:20 पर कार्यक्रम की समीक्षा पर आधारित सुनहरे पत्र कार्यक्रम की इन्होंने प्रशंसा की है, आपको और मनीष कुलकर्णी जी को धन्यवाद दिया है। चिन्मय सर का चिरपरिचित अंदाज में ईमेल पत्रों का जवाब देने में कोई जवाब नहीं। क्या बात है, अनुप्रास अलंकार की का प्रयोग कर लिया है इन्होंने।
0: क्या बात है,
1: है ना। और 8 मई को 8:15 बजे रागरंग में राग मालकोस पर आधारित प्रस्तुति हुई। 1952 में आई बेजू बावरा के मन तड़पत हरि दर्शन सुना, बहुत अच्छा लगा। पराग गोखले और कीर्ति गोखले जी का धन्यवाद। और 9 मई को स्वास्थ्य भेंटवार्ता में महिला रोग पर रौनक मुंशी गर्ग से गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज विषय पर जानकारी सुनी, पसंद आई और कैसे गर्भवती महिलाएं डायबिटीज कंट्रोल कर सकती हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद।
0: बहुत

0: धन्यवाद शाह दंपति को, और ये जो जर्रा नवाजी की आप प्रथा आरंभ कर रहे हैं, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वास्तव में जर्रा नवाजी है।
1: नहीं, पर
0: अरे
1: वो आपका जो टैगलाइन
0: ये
1: सूत्र वाक्य
0: तो
1: है ना कि आज तो दिन बन गया है, तो मैं भी अब आज आपको कह सकता
0: देखिए, तारीफों के अतिरिक्त हमें तो हमारा प्रयास प्रयास ये रहता है कि हमारे जो श्रोता बंधु हैं उनके दिलों की बात हम आपके समक्ष रख सकें और वो अपने दिल की बात हम तक अपने ईमेल से पहुंचा सकें। इसके लिए जितना सुगम इसे बनाया जा सकता है उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। आपका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: नेपानगर के ही श्रोता हैं प्रभु दयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे, साथ में खंडवा से हैं श्यामा बाई रायकवार और इनके परिवार के सभी सदस्य। दो लाइन दो पंक्तियों में खत्म कर दिया है। 13 मई दिन बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर और रामचरितमानस अच्छा लगा। हमें आकाशवाणी खंडवा के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: बहुत धन्यवाद। हमें आपका पत्र जो है उसमें और थोड़ी सी समीक्षा मिल जाए तो हमारा भी आज का दिन बन जाए। ऐसे हमारी गुजारिश है कि अगले सप्ताह हम विस्तृत रूप से आपको शायद पढ़ पाएं, पर हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें पत्र लिख के बताया कि आपको क्या पसंद आया।
1: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, कनक ऋषभ और भावना वर्मा,
0: हाँ
1: खैगांव महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा, निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रमों के हम दीवाने हैं और नियमित रूप से कार्यक्रम सुन रहे हैं। 10 मई रविवार का फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम अच्छा लगा, मनीष कुलकर्णी जी को बधाई।
0: क्या बात है, आपके पत्रों के हम दीवाने हैं साथियों। हम उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, तो धन्यवाद आपके इस पत्र के लिए।
1: चलिए आपको गुजरात लिए चलते हैं। गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी
0: अरे बताइए
1: ईमेल भेज
0: क्या
1: रहे
0: क्या
1: हैं।
0: लिख रहे हैं।
1: 7 मई को आपकी और मनीष कुलकर्णी जी के जुगलबंदी में जो सुनहरे पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इसकी प्रशंसा की है। लाजवाब पेशकश और पराग जी और गोखले जी, कृति गोखले जी द्वारा राग रंग कार्यक्रम मालकोस पर आधारित था, सुनकर दिल खुश हो गया। 10 मई को राखी जैन जी, 13 मई को नाजमा परवीन और 13 मई को आनंदराम और साथियों के निमाड़ी लोकगीत पसंद आए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका आपके पत्र के लिए।
1: गुजरात से ही कंडला बंदरगाह, कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल,
0: कांडला, हाँ
1: हाँ 13 मई को आनंदराम और साथियों से निमाड़ी लोकगीत पसंद आए। संत धर्मनगरी पसंद आया। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज़ में गजलें 12 मई को पसंद आई।
0: बिल्कुल।
1: 8 मई को कीर्ति गोखले और 10 मई को राखी जैन ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, धन्यवाद। और 7 मई का सुनहरे पत्र कार्यक्रम भी पसंद आया। फिर
0: धन्यवाद आपको आपके पत्र के लिए। हम प्रयत्न करेंगे आप सभी श्रोताओं को और विविध रूप से लोक रंग से परिचित कराने का।
1: लिखने की अदा देखिए
0: ना प्लीज।
1: अभी हम सुनहरे पत्र प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: क्या बात है।
1: और सुनहरे पत्र सुनकर दिल खुश हो रहा है। हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है। चिन्मय सर और कुलकर्णी जी को 7 मई के कार्यक्रम के लिए बधाई। मेरा नाम शामिल न करके आपने निराश किया। 21 और 27 अप्रैल को प्रसारित कार्यक्रम में भी लुभावना लगा। दीपमाला जी को बधाई। बाजीराव

0: पसंद आए। कीर्ति गोखले जी का धन्यवाद। 5 मई 6 मई को प्रसारित आपके बीते गीत कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। मनीष शर्मा और कीर्ति गोखले जी को बधाई। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: हाँ, ये पत्र हम पिछली बार शामिल नहीं कर पाए थे और हमने उसको नोट करके रखा था कि अगले सप्ताह इसको ज़रूर शामिल करेंगे। तो देखिए, आपने खुद ही इस नए ईमेल में उस पूरे पुराने पत्र को शामिल कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, अजीम वकार और गुड़िया खातून। हाँ। सुनहर पत्र की को नियमित सुनते हैं। पसंदीदा कार्यक्रम है 30 अप्रैल 2026 का प्रोग्राम, जिसमें मूले जी और पंकज जी ने पेश किया था दिल की गहराइयों को छू गया, कोटिशा बधाई। श्रोताओं के सभी ईमेल शामिल किए और यदि छूट भी गए तो अगले कार्यक्रम के लिए उसको भेज दिया गया। आपका यह कार्यक्रम बहुत लुभावना लगता है। आपकी मिति गीत कार्यक्रम 4 अप्रैल को लुभावना लगा। इस प्रस्तुति के लिए पंकज लाड़ जी को इन्हें मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। एक ही फिल्म से के तहत बाजीराव मस्तानी की कहानी गीत पसंद आए और 5 मई 2026 को मनीष शर्मा जी की प्रस्तुति पसंद आई, तो कीर्ति गोखले और मनीष शर्मा जी को धन्यवाद दे रहे हैं।
1: धन्यवाद आपके इस पत्र के लिए।
0: अगला जे लोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र डोम, टुक टुक लड्डू कुमार और प्रभा देवी डोम। 30 अप्रैल को लोकप्रिय कार्यक्रम सुना, मूले जी और पंकज जी इन्हें मेरी
1: ये कहां से लिखा है इन्होंने?
0: ये जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़।
1: अच्छा, हाँ जी,
0: नरेंद्र डोम।
1: हाँ हाँ।
0: 21 अप्रैल को दीपमाला जी द्वारा प्रस्तुत आपकी मिति गीत कार्यक्रम दिल को छू गया। 28 अप्रैल को श्वेता सोनी जी द्वारा पंकज उदास की गजलें सुनाई अच्छी लगी। 6 मई को एक ही फिल्म से बाजीराव मस्तानी की कहानी छू गई। कीर्ति गोखले जी को बधाई।
1: नरेंद्र जी, टुक टुक और सभी परिजनों को हमारी तरफ से कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ये नाम पहली बार सुने हैं, तो आप मेरे लिए तो नए श्रोता ही हैं, तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है बंधु।
0: इनके आपके मिति गीत कार्यक्रम आपकी पसंद के लिए
1: आते हैं, सुनहरे पत्र में आज मैंने पहली बार सुना इन्हें।
0: आदरणीय दोनों प्रस्तुतकर्ताओं जी को सादर प्रणाम। मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, मेरे बारे में बड़े से सोचा होगा। सुगम संगीत में मेहंदी हसन को सुना, रचनाएं सुनकर मजा आ गया। 8 मई को रागरंग कार्यक्रम में राग मालकोस पर आधारित गीत सुना। कीर्ति और पराग गोखले जी को धन्यवाद। और डॉक्टर रौनक से डायबिटीज को लेकर जो भूपेश पालन जी की चर्चा हुई, क्या क्या सावधानियां गर्भवती महिला को रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण थी। और विशेष श्रोता सनावत नगर की बहन रश्मि गुप्ता से राखी जैन की चर्चा अच्छी लगी, दोनों का धन्यवाद। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम भी अच्छा लगा जो खंडवा की गतिविधियों पर था। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिली, आरती शर्मा जी की प्रस्तुति थी। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मनीषा शिवानीकर की वार्ता मार्मिक लगी। दीपक पगारे जी की विविधा कार्यक्रम में निमाड़ी काव्य रचनाएं पसंद आई। निमाड़ को छोड़ो बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद थी, धन्यवाद। और मेरे महबूब फिल्म की कहानी के लिए नाजमा जी को भी धन्यवाद।
1: क्या बात है, ना केवल इन्होंने अपने पत्र में कार्यक्रमों के वो दिए हैं कौन कौन से पसंद आए, बनिस्बत उन्होंने साथ साथ गीतों के बोल भी लिखे, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका अंदाजा बयां दिल को छू गया बंधु, बहुत अच्छा। किन्होंने भेजा ये पत्र?
0: सनावत जिला खरगोन के हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह, दीपक और सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया।
1: कमाल कर दिया,
0: पूरा कटारिया परिवार
1: था आपका, अच्छा लगा हमें पढ़कर।
0: निशा रानी जाटव, अजिता परमार, राधिका परमार, हेमा और प्रभा सोनी डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं। 30 अप्रैल को सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। मूले जी और पंकज लाड़ जी को बधाई। 6 मई को एक ही फिल्म से कार्यक्रम के तहत फिल्म बाजीराव मस्तानी की कहानी के लिए कीर्ति गोखले जी को धन्यवाद। पिछले हफ्ते आपने मेरा ईमेल शामिल नहीं किया, पता नहीं क्यों,
1: समय अभाव के चलते आपका ईमेल शामिल नहीं हो सका था, पर चलिए इस सप्ताह हो गया है।
0: रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जज शेख, फलक फातिमा और बीबी अलिस्मा शेख।
1: अच्छा,
0: बहुत 30 अप्रैल को सुनहरे पत्र कार्यक्रम के दिलकश।
1: सर्वप्रथम तो बहुत अच्छे नाम है, मुझे नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी आगे।
0: जफर मुअज्जज शेख, फलक फातिमा और अलिस्बा शेख,
1: क्या बात है।
0: सुनहरे पत्र कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मूले जी और पंकज लाड़ जी को बधाई। 30 अप्रैल को छूटे हुए मेल अगले में शामिल नहीं करते, तो वजह बता सकते हैं क्या? मुमकिन हो तो क्लियर जरूर कीजिए। एक ही फिल्म से मैं 6 तारीख को बाजीराव मस्तानी की कहानी सुनकर दिल झूम उठा। कीर्ति गोखले जी को धन्यवाद। जीवन लता खेड़े और साथियों के गाय निमाड़ी लोकगीत पसंद आए, धन्यवाद, बधाई।
1: धन्यवाद आपके इस पत्र के लिए। कई बार पत्र छूट जाते हैं तो वो अगले कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाते हैं, यदि उनका नया पत्र आ जाता है तो दोनों को मिला के शामिल करने का प्रयत्न करते हैं।
0: 8 मई शुक्रवार कीर्ति गोखले और पराग गोखले द्वारा प्रस्तुत रागरंग कार्यक्रम राग मालकोस पर आधारित गीत सुनवाए पसंद आया। 9 मई का चेतना कार्यक्रम पसंद आया, इसमें रौनक मुंशी जी से वही गर्भावस्था में डायबिटीज पर जानकारी मिली। और 10 मई को मदर्स डे पर मोना दफ्तरी और

0: माँ सूठे जी की जीवन में के प्रेरक प्रसंग विषय पर वार्ता प्रासंगिक लगी। 11 मई को आरती शर्मा जी द्वारा यात्राओं के अनुभव पर आलोक सेठी के विचार रोचक लगे। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में डॉक्टर शुभांगी मिश्रा दवे की मदर्स डे पर वार्ता मार्मिक लगी। ये हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा के नियमित श्रोता आनंद जोशी और तनुजा जोशी।
1: धन्यवाद जोशी दंपति को, आपका पत्र हमें बहुत अच्छा लगा। आपने सारगर्भित रूप से बताया कि आपको कार्यक्रमों में क्या क्या चीजें पसंद आई।
0: मान्यवर को सादर अभिवादन। निम्न बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट करें।
1: अभिनंदन आपका, बताएं
0: भाई, स्पष्टीकरण मांग लिया है अधिकारी वर्ग का। सुनहरे पत्र में किस दिन व कितनी बजे तक के किस आधार पर पत्रों को शामिल किया जाता है ताकि शामिल न होने पर श्रोता व्यथित न हो। एक,
1: इसका उत्तर दिया जा चुका है। दूसरा,
0: दो, चेतना कार्यक्रम में यदि कोई स्वास्थ्य वार्ता आती है जैसे नेचुरोपैथी पर आधारित वार्ता थी, श्रोता उनसे संपर्क कर लाभ लेना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस से ही वह वार्ता सार्थक होगी वरना तो महज वार्ता बनकर ही रह जाएगी।
1: ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, पर हम आपको निजी जानकारी किसी भी जो हमारे वार्ताकार हैं वो उनकी सहमति के बिना नहीं दे सकते हैं। तो हम अगले बार से ये प्रयत्न करेंगे, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, कि उनसे पूछ लिया जाए कि क्या आपका निजी जो संपर्क सूत्र है वो साझा किया जा सकता है, यदि हो सकता है या उनसे संपर्क करने का कोई और माध्यम हो सकता है तो वो भी आपके सामने रख दिया जाएगा।
0: वैसे भी खंडवा शहर बहुत छोटा है। हाँ। और यहाँ यदि आप डॉक्टर का नाम जानते हैं, उसकी विशेषज्ञता विषय जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक से
1: खोजा जा सकता है। तो खैर उनके स्तर पर,
0: और यहाँ से हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं
1: और निजता का उल्लंघन भी होता है।
0: सुनहरे पत्र में आजकल श्रोताओं द्वारा नंबर तीन, कहानी सुनाने की फरमाइश की जा रही है, आपकी पसंद फिल्म की कहानी। आप नोट करके वादा कर तो कर रहे हैं, सुनाएंगे कब, प्रस्तोता के मन के साथ सुनवाएंगे?
1: हाँ, ये जो आपकी बात है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा मुझे भी प्रतीत हुआ कि मैं आपको वादा तो कर रहा हूँ पर वो क्रम उपस्थित नहीं हो पा रहा है। उसका एक कारण है, वो शायद आपको ये सामने रखना ज़रूरी है। वो ये है कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम बनते हैं वो मतलब उसका एक क्रम होता है, तो वो उस क्रमवार तरीके से बन रहे हैं। आपके ये जो फरमाइशें हैं ये हमने शामिल की हुई हैं परंतु उनका नंबर अभी नहीं आया है इसलिए वो आपके समक्ष नहीं आ पा रही हैं, पर उनको जल्दी ही इस रोस्टर में शामिल किया जाएगा।
0: इस बात में एक बात उन्होंने अलग से जोड़ दी है कि जब आप श्रोताओं की पसंद पर ही फिल्म सुनवा रहे हैं तो फिर उसके नाम से ही फिल्म सुनवा दीजिए। बेहतर यह होगा कि आप प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो चयन करें फिल्मों का और सुनवाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
1: देखिए, हम तो श्रोताओं का जितना सारा हमारे कार्यक्रमों में शुमार हो सके उतना प्रयत्न करते हैं और आपकी फरमाइशों को और शिकायतों को भी सर्वोपरि रखते हैं, सिरमौर करते हैं, तो इसलिए आपकी खुशी के लिए जितने सारे कार्यक्रम प्रसारित हो सकते हैं वैसे सुनवाए, प्रस्तुता के अनुसार तो होता ही है। जो फिल्में क्रम में आपके नहीं आई हैं वो अवश्य प्रस्तुता के अनुसार प्रस्तुत की जा रही है।
0: कार्यालयीन अंदाज में ये पत्र किसने लिखा था आदेशित करते हुए?
1: हाँ हाँ।
0: नाम जानना चाहेंगे?
1: बताइए बताइए।
0: रामकृष्णगंज खंडवा के सरोज जैन।
1: हाँ, अच्छा अच्छा प्रश्न था आपका जी।
0: शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर माँ नर्मदा, श्रोता परिवार राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, इंदौर से लिंबोदी से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा भाई चौधरी। खंडवा केंद्र से प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम सुनहरे पत्र, प्रस्तुतकर्ता आप दोनों साथियों को हमारा जय श्री कृष्ण। प्रसारित कार्यक्रम आस्था के स्वर, रामचरितमानस, निमाड़ी लोकगीत, युवाणी, ये सब अच्छे लगते हैं। साप्ताहिक लोकरंजनी कार्यक्रम पसंद आता है। पत्र कार्यक्रम के अंत तक समय समाप्ति पर आप पढ़ते हैं, नाम ही पढ़ते हैं, कुछ लिखने से का फायदा नहीं है, तमाम कार्यक्रम हमको पसंद आते हैं, लिख दिया।
1: किसने लिखा है ये?
0: मार नर्मदा रेडियो श्रोता परिवार शिव कोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन।
1: ओके, धन्यवाद आपका पत्र के लिए। आगे,
0: झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन पलक, अंतिम श्रुति, यशराज किट्टू, वैभव परी और गौड़ परिवार।
1: हाँ,
0: डायबिटीज वाली वार्ता इनको भी पसंद आई है जो भेंटवार्ता प्रस्तुत की गई थी। सनावत की गुप्ता दीदी से राखी जैन की बातचीत पसंद आई और मंगलवार का विविधा, सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा, बुधवार का एक ही फिल्म से पसंद आए, नाजमा जी को धन्यवाद।
1: ठीक है, आपके इस पत्र के लिए हम बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं और पुराने वाले पत्र के हमारे जो साथी हैं उनका भी, आपके शिकायती पत्र के लिए भी आपका स्वागत है। कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां आपको पसंद आती हैं ये जानकर हमें अच्छा लगता है। अब समय हो रहा है आपको एक सुंदर से, प्यारे से, अच्छे से गीत के साथ विदा आपसे लेने का, तो प्रस्तुत है ये गीत।

0: श्रोताओं, गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप भी गाते और गुनगुनाते रहिए। उससे पहले हम यहाँ से आपसे आज के इस कार्यक्रम में सुनहरे पत्र कार्यक्रम से चलना चाहेंगे, तो आज्ञा दें आज के साथी पंकज लाड़
1: और चिन्मय दीक्षित को। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी साप्ताहिक कार्यक्रम सुनहरे पत्र का प्रसारण किया जा रहा था। FM बैंड 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल

0: 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में

0: 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है,

0: सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। उससे पहले ये संदेश।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी खंडवा से सुगम संगीत में आज सुनिए वड़ाली बंधुओं की गाई सूफी कव्वाली, रचना बुल्ले शाह की है।

शाह अपने आप को कहते हैं भुलिया, रात को जागता है, दिन पीर बनकर बैठ जाता है। अरे कुत्ते भी तो तेरे साथ सारी रात जागते हैं, तू पीर बनकर बैठ जाता, कुत्ते कुछ भी नहीं बनते। कुत्ता

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे बुल्ले शाह की सूफी कवाली, फनकार वड़ाली बंधु।

0: ओए होए, ये है निमार की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आज फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा सुबह 10:35 पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बा लक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते

और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी

विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाई। वासुदेव हरी चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ

प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयर्स्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरि चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

अभी वतन का राग प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनके बैनर तले बने फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल के।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हिमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

तरन्नुम मलिक मोहित चौहान की आवाज़ों में एक था टाइगर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत, और आपको अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाज़ें।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर, श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा होगा आज। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये बनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर शान और मोंटी शर्मा की ये आवाज़ें।

0: वनवास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजें थी। सुनील शिव का ये गीत लिखा हुआ था और मोंटी शर्मा का संगीत था। ये चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बार बार देखो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमर आरसी और साथियों की आवाजों में जैस्लीन रॉयल का ये संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही।

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, यह कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर शरद बाघेला। अशोकनगर जिले के 24,667 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 रुपए के प्रति माह के मान से 1,48,200 रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। श्री सिंधिया जिले की मुंगावली, बहादुरपुर, चंदेरी, पिपरई तहसीलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने अशोकनगर पिपरई मार्ग पर नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से मुंगावली पिपरई से अशोकनगर जाने में नागरिकों को 12 माह निर्बाध यातायात उपलब्ध होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। तेज लू चलने के कारण लोग खुद को कपड़ों से ढककर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बीते दिनों जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर केपी यादव ने जिले का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध सुविधाएं, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण और किसानों को भुगतान समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश अजय खेमरिया ने जिले के प्रवास के दौरान जेल में आयोजित बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिन्हित 7 बंदी दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए। संभागायुक्त ग्वालियर मनोज खत्री ने जिले की नवीन कृषि उपज मंडी और एक निजी वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और उपार्जन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वसहायता समूह की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच लैंगिक समानता, उनके अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। जिले में जनगणना का कार्य जोरों पर है। विगत दिनों जिले में स्वगणना कार्यक्रम संचालित किया गया। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समकक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। अशोकनगर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत फिटनेस जागरूकता रैली के साथ की गई। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्राम सहराई में बेलन नदी का गहरीकरण कार्य किया गया। इसी के अंतर्गत अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने ग्राम पंचायत सहराई में ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने विगत दिनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी व खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है, जिसको लेकर विगत दिनों पीपरई क्षेत्र के बेसरा गांव के पास खेतों की नरवाई में लगी आग की चपेट में आने से 4 बाइक सवार झुलस गए। अशोकनगर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिले में विगत दिनों पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। शुभारंभ अवसर पर अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी स्थित किला कोठी हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से

0: पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं अशोकनगर में विगत दिनों अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 117 नवविवाहित जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले में आगामी खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.46 लाख मीट्रिक टन एनपीके, इसी प्रकार 5.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी एनपीके और 3.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल।
2: जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जा रही थी। एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें।

0: लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर

0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारु ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारु ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड।

0: इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: सास कराती है।
1: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
0: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
3: अच्छा,
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
4: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: अरे नहीं, यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहू।

0: आहूजा, मंगतराम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 101.2 MHz पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं पंकज लाड़। स्वीकार करें नमस्कार। यह है साहेब फिल्म का गीत, गीतकार अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी, आवाजें एस जानकी बप्पी लहरी और साथियों की।

साहेब फिल्म का इसकी ये गीत सुनना चाहता था हमारे इन श्रोताओं ने। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी, जूनापानी सनावत से कालूसी बड़ोले, सीताराम हीरालाल बड़ोले और साहिल, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन और संप्रीत पंचोलिया, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद शाकिब पवार, मोइन छोटू पवार और हसनैन पवार, बाजार चौक दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और वामिका गंगराड़े, कल्याणगंज खंडवा से कौसर भी पवार, हसीना भी पवार, अलमाज बानो और सबीना, निजामाबाद से शेख हल्लाबख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि, बाजार फैल शेगांव से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद जुनेद मोहाल और पूरा मोहाल परिवार, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजजीत सिंह और गुरनूर सिंह, पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग और तनुजा देवांगन, राठौर मोहल्ला जामली कला से पाणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर और पूरा राठौर परिवार, छेगांव खंडवा से अशोक वागे, वंदना वागे, कान्हा वागे और पूरा वागे परिवार, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आशा सबिया, अनस और रेहान, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर, भाटापारा से सोहन जोशी और पायल जोशी, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर और प्रांजलि बोरगांवकर, दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवा से मोहम्मद हसनैन पवार, हस्सू बाबा, मोइन छोटू और मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड भीकनगांव से साफिया, अरहान खोकर, अनस, शिफा खोकर और पूरा खोकर परिवार, मोटका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल और पूरा पटेल परिवार, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, प्रसाद जाधव और सोनल जाधव, नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी चौक रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, यशराज शिंदे और सुनीता शिंदे, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और इनका पूरा परिवार, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवान, राजेंद्र सिंह और इनका पूरा परिवार, सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा, सनावत से ही शेख मूसा और राजकुमार बोड़ाना, सुदामानगर खंडवा से नंदन नंदिनी लक्ष्मी रितु और मुकेश जगताप, कुमला से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, मारवाड़ बिलाड़ा से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान और प्रतीक चौहान, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और संचित कुमार वायाल, मित्रनगर बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े और अदिति बंसोड़े, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा, ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा, बड़ाबन चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और किट्टू, महसूल सीतामढ़ी से मसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज और रिफत जहानाज, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर

0: होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मिस सीमा
6: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 बन जाओगे।
6: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, कापासेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा और इकबाल मोगा, जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी अजनबी और जोई अजनबी, मेहर रोड से अभिजीत प्रसाद मेहरा, मिथुन सांगा और राधिका जाटव, टोडियाखेड़ा से देवशंकर डोम और प्रभा डोमन, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली और अस्मावली, जालंधर से अजय देव जाधव और संदीप जाधव, विरमगांव राजकोट से ऋषि गुप्ता और ट्विंकल, कस्बा बराड़ा अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका मन्नत, सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर और पुन्नू वड़तकर, सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कुंदन रंजन और प्राची, बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और साधना सुमेत दामोदर, भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा और लोकेश जोशी, कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता और रिमी, झुमरी तलैया, गिरिडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी और अभय कुमार, बोरोपारा चौक बस बेरिया से मुन्नी देवी, जय प्रकाश साव, बसंतलाल साव और पूरा साव परिवार, मोतला से विजय सुरलकर, रत्नमारा सुरलकर और आरती सुरलकर, शास्त्रीनगर बीड शहर से किसान सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और साईराज सपकाल, उमरखेड़ से फराह खान और आयशा खान, जालंधर से संदीप जाटव और आशु जाटव, राजकोट से प्रेमा रानी जाटव और डॉली, गंज डुंडवारा से फरहत शेख, चमनपुरा मोरबी से प्रेमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती, गौराया, जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर, पाकुड़ से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत

किसुतासु और अर्णव आनंद, बोहड़ा गाछी से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, कल्लनगंज खंडवा से कौसर भीम पवार, हसीना भी पवार, अलमास बानो और सबीना, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, रचित खुराना और किरण खुराना, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, पटना से वसीम अकरम, सालिहा खातून और गुड़िया, भालुस से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और राधिका, सनावत से दगड़ू सेन, धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन और कलाबाई सेन, दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर दीबा और डॉक्टर सना, नागपुर वैशाली से शैलेश गवाणकर और एक

दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इरफान, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, अहमदाबाद से कंचन कुसुम और सरोज सोनार। यह है बाला फिल्म का गीत, गीतकार जानी, संगीतकार बी परक, आवाजें हार्डी संधू और स्वस्ति महलू की है, फिल्म बाला।

आकाशवाणी खंडवा से आपकी पसंद कार्यक्रम में अगली पसंद हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर अहमदाबाद से कंचन कुसुम और सरोज सोनार, वड़िंगखेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, बुलढाणा वटसिंगी से अमोल दामोदर, शोभाताई दामोदर और दीपाली, पाटन से धीरज बीराबारी, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन और प्रथमेश चंदन, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध, आकोट से विनायक राव बेंडे, मंगला बेंडे, विजय और शुभम बेंडे, श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना और हर्षित, रांजरांदगांव से बबलू साहू, जमुनू देवी साहू, प्रेम और पूजा साहू, जाखोद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी खटक, अमरजीत खटक और योगेश कुमार खटक, हिंगोली से साहजी बोड़के, नंदा बोड़के और हनुमान बोड़के, अंबेडकर कॉलोनी वाकुड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत वर्मा, परभणी से रूपेश संघई, महेश संघई, ब्रजेश संघई और ब्रजेश संघई, जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, दतरंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश और गन्नूलाल रजक, हयात कॉलोनी अररिया से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी और शाहनवाज अब्बासी, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर और चेतन मनवर, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रकाश प्रशांत राजे जाधव और प्रथमेश जाधव, डाबकी रोड अकुला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर और कुमार गौरव मंदुरकर, विरमगाम सिटी से उस्मान वोहरा और शहनाज वोहरा, डोडी लोहारा बालो से सुखदेव जाटव, सरिता जाटव और राकेश जाटव, छोटी बलिया

मुंबई से अहमद दुखनी सदफ जूही इकबाल और इनका पूरा परिवार, कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमरा नसरीन आसमा परी और मंतशा, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक खतीजा और मोहम्मद अशफाक, रायपुर से मोहम्मद इमरान और इशरत परवीन, जेल रोड शिमला से प्रमिला अशोक जाटव, प्रभा जाटव और संदीप श्याम जाटव, उमरखेड़ से सोनाली जटोलिया, सरिता जटोलिया, पूजा जटोलिया और आभा जटोलिया, छोटी बलिया करजत से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन और पूरा राइन परिवार, उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना और फरदीन खान, जेल रोड जालंधर से मीना कौर और मन्नत नूर, खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर, सरगुजा से अजीता पाल और प्रभार रानी। यह है आकाशवाणी खंडवा से आज के आपके भी आपकी पसंद कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। भारत फिल्म का गीत, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार विशाल ददलानी और शेखर, बोल इरशाद कामिल के हैं, आवाजें आकांक्षा सिंह, नीति मोहन और कमाल खान की।

ये था आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिरी गीत। अब इजाजत दें आज के साथी पंकज लाड़ को। नमस्कार। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आज गुरुवार है और अब से कुछ ही पलों में यानी सुबह 11 बजे रिकॉर्डिंग की जाएगी फोन करेगी सुने कार्यक्रम की। फोन नंबर है

733 खंडवा का एसटीडी कोड 2226063। हमें आपके फोन कॉल्स की प्रतीक्षा रहेगी। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में अनुप्रसारित किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे मनमस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जा डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है। सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से राम शंकर की आवाज में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स

0: देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या, जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत ब्रोज अनजान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, येशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल में आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत, हम आपके हैं कौन।

0: फिल्म से लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र अवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया है इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविंद्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं, और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से, जो हमने बनाई है आपके लिए, उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है, भोजन में नमक की तरह, जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, जितना आपने पहचाना उतना अच्छा है। कितनी बढ़िया बात है कि आप पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत पर यह शब्द हो सकते हैं, मोहब्बत, डॉन, हसीन, पैर, तारीफ, बहुत सारे शब्दों का इन्होंने जिक्र किया है। और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर। कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है।

0: हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबादत में मुझे, इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना, डॉन पकड़ में नहीं आता। और इससे इबारत, इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर, उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बना रस वाला

0: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म। अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पांव बहुत हसीन है रे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट योर पुष्पा, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं, ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं। और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार न मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि

ये पैर बहुत हसीन है, ये राजकुमार जी का, जरा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा, अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा, और इतना सब बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है, बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डांट को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं या धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधरी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे

कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना, बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का स्माइक असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे मामू गेम्बो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबूजी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या, सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनु की

का सवाल है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मुगे में खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग्स जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है, और बता दीजिए जल्दी से। तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है, और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और इसके साथ तारीख

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और इसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी, तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

0: गए हैं।
1: आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ। जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहां नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देवास जिले के टोंक कला गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है और करीब दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। संभाग आयुक्त और कलेक्टर मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस साल जनवरी में शेख मोहम्मद भारत आए थे। ये एक दशक में उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे।

बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, नए एयरपोर्ट और अग्निवीर आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और ITI को रोजगार से जोड़ने पर भी बात होगी। सरकार देखेगी कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ रुपए की यह योजना अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। इस मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ साथ नाबार्ड, ICAR और एपेडा भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी साझा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी है। कल चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी थी। आज दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई होगी। बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खजुराहो में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 45.2 और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा उन्नत तकनीक अपनाने वाले किसानों से उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अशोकनगर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया। सिवनी जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों की सुविधा के लिए 78 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में आज युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आज संपर्क अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। और आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के
1: 2:00 आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख

0: भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है।

0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के

0: में मान्यता प्राप्त हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं 3 विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: हम हसी।
1: हम सुन रहे थे मधुमती फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
1: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
0: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है ये, तो आज भी वजह बताइए
1: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
0: हाँ,
1: सेहत का ख्याल है या नहीं।
0: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
1: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
0: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं
1: जी, बिल्कुल
0: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
1: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
0: हाँ,
1: है ना,
0: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लेकर बताएंगे
1: जी, बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
1: बिल्कुल, तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहाँ पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कार

0: बताइएगा तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सकें दिल को हल्का करने में
1: जी
0: या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते
0: अरे
1: हैं। कुछ
0: बिल्कुल
1: ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं। कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है।
0: जी
1: वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं,
0: हाँ
1: बस अपने शौक
0: हाँ
1: में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर, अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
1: भाई
0: है उसके
1: जानकारी
0: बारे में।
1: बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त, जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
0: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे, और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से, गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए।
0: हाँ,
1: पति के साथ
0: वो चली आई, और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरी बाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरी बाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे, लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरी बाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय

0: जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपये मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है।
1: जी
0: और भूरी भाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरी भाई
0: और
1: कह जी भूरी भाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है, और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी, जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी।
1: आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते, जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न

0: और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए।
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो।

0: पांडव है भारत के, जो कहते वो ही होगा।
1: ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव है भारत के, जो कहते वही होगा।
2: ओए जम के एक जमा दूं

जिसे उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा महेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की।
1: दोस्ती की।
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं।
0: जी।
1: वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज 1 घंटा हमें मिलता है। सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते,
1: सही बात है।
0: है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे ये तो श्रोता भाई हैं। ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपने हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारा हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल।

0: बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सुना है।
1: हाँ तो वही चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
0: चलिए

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना, इनकी कहते ना आसान ईएमआई पर किसी चीज को ले लेना, जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
1: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है भाई, आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है, किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख, चैन, नींद, खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
1: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है, या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
0: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किस्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है, तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं
1: जी।
0: तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की, क्योंकि आपको बरसों से आदत है, तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही
0: हमें
1: कहा।
0: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
1: आमदनी
0: रखनी,
1: होनी चाहिए
0: या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
0: जी
1: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
0: हाँ
1: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
0: जी
1: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
0: हाँ
1: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक भी चली
0: और वो
1: जाती है।
0: जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन

0: के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी उसमें महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
0: जी
1: हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त
0: जी
1: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
1: चलिए
0: दें?
1: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है, और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए,

0: घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने। इस
0: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं, और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
1: जी
0: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में, वहां रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको
1: जी
0: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: श्रोताओं नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवा ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना आप, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है। तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुख्य

0: छंद की कविताएं लिखते हैं, हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
1: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
0: जी जी जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ
1: तो
0: बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ, तो इसीलिए रेडियो
0: अच्छा,
1: कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में वो काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा,
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, को थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बारे में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो
0: जी
1: हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर,
0: अच्छा,
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए। बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो
0: जी
1: डिगी के बारे में।
0: तो वहां पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आदमियों को दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हैरो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा, तो
0: जी
1: बंगाली लोग रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है, तो
0: जी
1: बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं, और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है इस समय, बस जुताई हो चुकी है। अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जाते हैं अभी। क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं,
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं। उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है, और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विविध भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, अभी तो फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और ये नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जोर आल अली जोर ए अलिफ पे सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पे शो।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी। मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम
1: जी
0: होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम? कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी।
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत,
0: जी जी जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए हैं, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों।
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप पे आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप पे। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या।
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है। तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएंगे आज कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले, लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं
1: हाँ,
0: वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के
1: हाँ
0: लिए?
1: दीदी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली, तो वो छुट्टी जो है ये हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाली दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है?
1: अमरावती विदर्भ में बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी, और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है राजस्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हाल चाल है, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिकद्वारा श्रीनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है। और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। जोत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा,

0: अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, आवाज मूवी से, तेरी

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप

0: सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बंद है।
0: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: कालजयी गाना है, इसके तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। तो
1: जी
0: अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो,
0: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से। हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें,

0: के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं एहसासों से भी बनते हैं, तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपनेपन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत, आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

कोई अपना बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है, एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो ता उम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है, दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कभी कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हां दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का

कभी कभी आपको रौंदकर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज़ बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज़ बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: ये है विविध भारती, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे।
1: दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आपको सुनवाते हैं निमाड़ी लोकगीत। कलाकार हैं नारायण यादव और उनके साथी।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: अरे गुरु मन

0: ईछे नी माड़की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: अरे करुणा करी करी रड़ी रही तारा कसा भागले।

चंद्र सरी का दानव अनन संसार कामा अर सत का कारण बिक गए अनर हरिया राजा आरोपा।

अरे राजा भी क्या में तर घर अन रानी माली के द्वार, अरे रोहित भी क्या ब्राह्मण घर अन तुन भारी करी रे कर। अरे फूल लेना।

श्रोताओ, आपने सुने नारायण यादव और साथियों के गाए पारंपरिक निमाड़ी लोक गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुने युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आप रेडियो दोस्त और आज के कार्यक्रम का होस्ट हिमांशु, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का क्रम जो कि है इंद्रधनुष। लेकिन हमेशा की तरह ही हम बढ़े हमारे क्रम की ओर, पहले जान लेते हैं सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है वो ये है कि बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ किस वीर राजा ने लिखा था, और जो दूसरा प्रश्न है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज की चर्चा के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत मिसाल है। आज 14 मई छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व, युद्ध कौशल और ज्ञान के गुण दिखाई देते हैं। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि संस्कृत, मराठी और कई भाषाओं के विद्वान भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि संभाजी महाराज ने कम उम्र में ही राजनीति और युद्ध नीति में अपनी विशेष पहचान बना ली थी। उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। औरंगजेब जैसी विशाल मुगल सत्ता के सामने उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्र के सम्मान से समझौता नहीं किया। इतिहास गवाह है कि जब उन्हें बंदी बनाया गया तब भी उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। श्रोताओं, संभाजी महाराज हमें संदेश देते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और आत्मसम्मान से बनता है। उनका जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने मूल्यों और सत्य के मार्ग पर हमेशा अड़िग रहना चाहिए। आज उनकी जयंती पर देशभर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके अदम्य साहस को याद कर रहे हैं। आज 14 मई छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज के जन्मदिन पर हम सभी उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्रम की ओर, इंद्रधनुष की ओर। जब आसमान में इंद्रधनुष खिलता है तो उसके हर रंग की अपनी एक अलग पहचान होती है।

कोई रंग उम्मीद देता है, कोई प्रेम का एहसास कराता है, कोई संघर्ष की कहानी सुनाता है, तो कोई आत्मा को शांति से भर देता है। आज का हमारा यह कार्यक्रम केवल गीतों का सफर नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हम जीवन के रंगों को महसूस करेंगे। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, भावनाओं के इस संगीत को महसूस कीजिए। आज का जो हमारा पहला रंग है वो है आस्था का रंग। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अंधेरा सा लगने लगता है, रास्ते बंद दिखाई देते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मन डर से भर जाता है। लेकिन ठीक उसी समय मन के किसी कोने में से एक छोटी सी आवाज आती है, सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल। यही आवाज आस्था है। आस्था केवल मंदिरों में जलाए गए दीपक का नाम नहीं, आस्था वो शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होने का साहस देती है, वो विश्वास जो कहता है कि गिरने के बाद भी फिर उठा जा सकता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जब वही विश्वास ईश्वर से जुड़ जाता है तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो आइए विश्वास और उम्मीद के इस उजले रंग को महसूस करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, आस्था के रंग के बाद अब चलते हैं दूसरे रंग की ओर। और जो हमारा दूसरा रंग है वो है श्रृंगार का रंग, सांसारिक मोह और सुंदरता, प्रकृति की हर खूबसूरती, सुबह की पहली किरण, बारिश की ठंडी बूंदे, किसी अपने की मुस्कान, ये सब श्रृंगार के रंग है। श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की कोमल भावनाओं का उत्सव है। प्रेम जब शब्दों से निकाल कर एहसास बन जाता है तब श्रृंगार जन्म लेता है। किसी का इंतजार करना, किसी की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा देना, किसी की खुशी में खुश खुद हो जाना, ये सब प्रेम के छोटे छोटे रंग हैं। लेकिन दोस्तों, श्रृंगार केवल आकर्षण नहीं, यह हमें जीवन की सुंदरता को महसूस करना सिखाता है। ये बताता है कि कठोर दुनिया में भी कोमलता बची हुई है। तो आइए प्रेम, सुंदरता और भावनाओं के इस सुंदर मधुर रंग में खो जाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे रंग की ओर। और तीसरा रंग जो है वो है संघर्ष का रंग। दोस्तों, अगर जीवन एक नदी है तो संघर्ष उसका बहाव है। संघर्ष के बिना ना सफलता मिलती है और ना अनुभव। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी लड़ाई से गुजरता है। किसी का संघर्ष गरीबी से होता है, किसी का हालात से, किसी का समाज से, और कई बार इंसान खुद से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज का निकलना तय है। जो इंसान संघर्ष करना सीख जाता है वह हारना भूल जाता है। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठना बंद कर देना बुरा है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हर थके हुए इंसान को फिर से आगे बढ़ने की

दोस्तों, अगला रंग है करुणा का, यानी दया और संवेदना। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत दिल वही होता है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। करुणा केवल दया नहीं, बल्कि किसी के आंसू समझने की क्षमता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने दुख में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। लेकिन कभी किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर देखिए, मन को जो सुकून मिलता है वो किसी दौलत से नहीं मिल सकता। कभी किसी भूखे को खाना खिलाइए, कभी किसी अकेले इंसान से प्यार से बात कीजिए, आप महसूस करेंगे कि इंसानियत अभी जिंदा है। करुणा हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाती है। तो

दोस्तों, अब पांचवा रंग है वैराग्य का, मोह से दूरी और ज्ञान। जब इंसान जीवन के कई उतार चढ़ाव देख लेता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि संसार की हर चीज अस्थाई है। धन, दौलत, शोहरत, रिश्ते सब समय के साथ बदल जाते हैं, और तब जन्म होता है वैराग्य का। वैराग्य का अर्थ है दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर भी मोह से ऊपर उठ जाना है। जब मन शांत होने लगता है, जब इच्छाएं कम होने लगती हैं, जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब वह ज्ञान की ओर बढ़ता है। वैराग्य हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि इंद्रधनुष का यह सफर आपके दिल और आत्मा को छू गया होगा। अब समय है प्रश्नों के उत्तर का। हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में जो प्रश्न पूछे थे, आइए जान लेते हैं उनके उत्तर को। हमारा जो पहला प्रश्न था, बुद्ध भूषणम नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों, इसका

उत्तर है छत्रपति संभाजी महाराज ने। और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो ये था कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है, तो इसका उत्तर है पारा। अब आपके रेडियो दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब प्रसारित होगा फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

आइए अब आपको सुनवाते हैं MM कीरवानी का संगीतबद्ध एक गीत अलका याग्निक की आवाज में। आनंद बख्शी का यह गाना है फिल्म जख्म।

0: मेस्मराइजिंग मुस्कुराहट की मलिका माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं
1: सुनहरे पल।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म जिस्म का गाना आपने सुना, और अब लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़, 1942 अ लव स्टोरी।

और अब कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का गीत, फिल्म साज। संगीत उस्ताद जाकिर हुसैन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज MSV हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही

संगीतकार जतिन ललित की जोड़ी का ये गीत आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत था। अब ये कार्यक्रम समाप्त करने के विद्याधर मुले को इजाजत दें। नमस्कार श्रोताओं, हम बोल रहे हैं FM 101.2 MHz पर आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.2 MHz पर श्रोता हो, ये है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
4: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
5: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
4: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
5: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
4: आप कब आ रहे हैं
5: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेस्मराइजिंग मुस्कुराहट की मल्लिका माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं
2: सुनहरे पल।
3: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
1: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
2: आकाशवाणी खंडवा, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: मेस्मराइजिंग मुस्कुराहट की मलिका माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर हम पेश कर रहे हैं
1: सुनहरे पल।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं माधुरी दीक्षित पर फिल्माए एक से बढ़कर एक नगमे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और तकनीक का उपयोग सुशासन के लिए करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी बुकिंग में से 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च से अब तक 7,00,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 7,50,000 नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। डॉ. यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले में 25 से 65 साल की करीब 10,000 महिलाओं को एचपीवी डीएनए आधारित जांच की जाएगी। एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर जांच और उपचार के लिए तकनीकी सहयोग देगी और मास्टर ट्रेनर्स की टीम भी तैयार करेगी। इस पहल का मकसद प्रदेश में सर्विकल कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है। प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 4-लेन सड़क मार्ग पेंच, काना, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगल वाले इलाकों में अंडरपास और स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर से पर्यटकों को एक ही ट्रिप में चारों बड़े टाइगर रिजर्व घूमने की सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2027 तक यानी सिंहस्थ 2028 से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के RMO के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध ब्रांड सांची ने भी दूध दो रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सांची ने करीब एक साल बाद दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मई 2025 को बदलाव हुआ था। भोपाल में सांची की रोजाना 7.5 लाख लीटर से ज्यादा बिक्री होती है। दाम बढ़ने की वजह पशु आहार, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा की द्वारका नगर स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि बावड़ी, कुएं और तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद मंत्री सारंग ने चांदबड़ में संपर्क अभियान के तहत बिजली सेवा शिविर का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में अब हर घर में गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में देना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने और सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है और रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर समेत दर्जन भर जिलों में भी लू का असर रहेगा। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी का अलर्ट बना रहेगा। अब बात खेल की। IPL में अब से कुछ देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। लगातार 4 मैच हार चुकी पंजाब पर जीत का दबाव है। मुंबई ने पिछले मैच में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के छक्के से बेंगलुरु जीत गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में आज नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर DGP कैलाश मकवाना ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग ने 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। खंडवा में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में जनभागीदारी को आवश्यक बताया। नीमच जिले के ITI मनासा में 21 मई 2026 को युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला कलेक्टर ने दूरस्थ वन ग्राम झिरिया डोह में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। निवाड़ी जिले में धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान और आकांक्षी विकास खंड की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। और सीहोर जिले के जिला खाद्य विभाग द्वारा राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में LPG और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कल से 2 रुपए

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला हमारा सभी भाई बहन का आपकी बहन माधुरी सेन की राम राम। भाई बहन, प्राकृतिक संसाधन जल वायु मिट्टी खनिज वन मानव जीवन को आर्थिक विकास को आधार छे। ई भोजन आवास ऊर्जा कोयला पेट्रोलियम न स्वच्छ हवा प्रदान कर जीवन बनाए रखज। इनका बिना दैनिक जीवन न औद्योगिक उत्पादन असंभव छे। जी हमका स्वस्थ वातावरण न विकास का लेन कच्चो माल देज। भाई बहन, चूंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित छे न तेजी से खत्म भी हुई रहा आज, एका लेन इनको संरक्षण न सतत उपयोग जरूरी छे ताकि भविष्य की पीढ़ी न का लेन ई उपलब्ध रह सक। भाई बहनों, प्राकृतिक संसाधन न का हम कई छोटा छोटा प्रयास करी खन बचाई सकांज। जैसा बिजली बचावा, उपयोग नहीं होना पर लाइट पंखा न बिजली उपकरण बंद करी देवा, न एलईडी बल्ब न को उपयोग करा। सार्वजनिक परिवहन जैमे निजी वाहन न की जगह मेट्रो बस या साइकिल को आप उपयोग करी सकोच। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा पैनल सौर कुकर न सोलर वाटर हीटर ख बढ़ावो देवा। भाई बहनोनी, वन न मृदा को भी हमका संरक्षण करनू होएगा। जेमा वृक्षारोपण एमा अधिक से अधिक पेड़ लगावा न मौजूदा वन की रक्षा करा। कागज को कम उपयोग, डिजिटल फाइल को उपयोग बढ़ावा ताकि कागज का लेन पेड़ नहीं काटा। मृदा संरक्षण, रासायनिक उर्वरक न की जगह जैविक खाद को उपयोग करा। भाई बहनों, जल को भी संरक्षण करा क्योंकि जल की एक एक बूंद हमारा लेन कीमती छे। भाई बहनों, पुनर्विचार, अपनी खरीदारी की आदत न पर पुनर्विचार करा। न केवल आवश्यक वस्तु ही खरीदा, उपभोग कम करा, न कचरो पैदा नहीं करा। साथ ही वस्तु न का फेंकने की बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करा। न कागज प्लास्टिक कांच न धातु ख रिसाइकल का लेना जरूर भेजा। भाई बहनों, पर्यावरण का अनुकूल जीवन शैली ख बनावा। प्लास्टिक को बहिष्कार यानी एकल उपयोग वाला प्लास्टिक से बचा। भाई बहनों, स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तु को उपयोग करा जैकासी परिवहन में ईंधन कम खर्च होएगा। भाई बहनों, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण आज हमारा सामूहिक प्रयास न पर निर्भर करे ताकि हम एक सुरक्षित भविष्य बनाई सका। टिकाऊ जीवन शैली अपनानू, उपभोग कम करनू, स्थानीय संरक्षण प्रयास को समर्थन करनू न पर्यावरण का अनुकूल नीति न की वकालत करनू, ऐसा ठोस तरीका छे जिनका से व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण में योगदान दे सकच। भाई बहनों, प्राकृतिक संसाधन को उतनो ही उपयोग करनु चाहिए जितनी हमका आवश्यकता होए, क्योंकि भविष्य की जरूरत सी

0: अभी हमने सुने हो कांता चौहान न साथी न को गायल योनी माड़ी लोकगीत।
1: ये

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: न भाई बहन हो, अब आपसे पूछ ले आज आज को खेती किसानी संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारा प्रश्न छे कि सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा को काई नाम छे। न इना प्रश्न को उत्तर आप सोची खने राख जो, क्योंकि इना प्रश्न को उत्तर हम आपको देवांगा कार्यक्रम का अंत में। जब तक सुनता रहो कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहनोनी, मधुमक्खी कीट वर्ग को प्राणी छे। मधुमक्खी से हमको मधु यानी शहद प्राप्त हुए जी अत्यंत पौष्टिक भोजन छे। ये संग बनाई खन रहे न प्रत्येक संग में एक रानी हुए, कई सौ नर न शेष श्रमिक हुए। मधुमक्खी छत्तो बनाई खन रहे न इनको ई घोसलो या छत्तो मोम सी बनज। भाई बहन हो, मधुमक्खी पालन का बढ़ावा देना का उद्देश्य सी शासन द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन न शहद मिशन की शुरुआत करी गई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन न शहद मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना छे, जेको उद्देश्य मधुमक्खी पालन का संपूर्ण विकास ख वैज्ञानिक तरीका सी बढ़ावा देनु छे। एको अंतिम लक्ष्य देश में मीठी क्रांति को शुभागमन लानु छे। इना मिशन को कुल बजट आवंटन 500 करोड़ रुपया छे, जेका वर्ष 2020 सी 2021 सी 2025-26 का बीच क्रियान्वित कियो जाई रह्यो छे। भाई बहनों, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन न शहद उत्पादकता में सुधार, उत्पादन उपरांत प्रबंधन न शोध तकनीक का उन्नयन पर केंद्रित छे। मधुमक्खी पालन का प्रोत्साहन देना का लेण मधु क्रांति पोर्टल निर्मित कियो गयो छे, जेमा शहद उत्पादन का सभी स्रोत की पहचान करी खना उना उत्पादक को ऑनलाइन पंजीकरण कियो जाई सकज। भाई बहनों, मधुमक्खी पालन एक कृषि जनित गतिविधि छे, जी आम तौर पर गांव में किसान न भूमिहीन श्रमिक न की कृषि गतिविधि को एक महत्वपूर्ण हिस्सो छे। ई कई पौधा में परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभावज, जेमा फसल उत्पादन न किसान की आमदनी बढ़ाना में सहायता मिलज। इना कार्य सी कई मूल्य वर्धित मधुमक्खी उत्पाद, जेमा मोम, मधुमक्खी परागण, प्रोपोलिस नामक पौधा, रॉयल जेली, बीवेनम का उत्पादन का जरिया किसान की आजीविका को स्रोत न आमदनी बढ़ज। भाई बहनों, भारत की विभिन्नता भरी कृषि जलवायु परिस्थिति में मधुमक्खी पालन, शहद पालन न एक ही निर्यात की व्यापक क्षमता छे। साथ ज ग्रामीण विकास न सतत कृषि मिशन में एका महत्व का समझी कही भारत शासन न एक नई मीठी क्रांति अभियान को हिस्सा का रूप में राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन की शुरुआत करी, जेकासी देश में गुणवत्ता परक शहद का उत्पादन

0: नियंत्रण का साथ किसान की आमदनी वैज्ञानिक न संगठित तरीका सी मधुमक्खी का जरिया बढ़ाओ। भाई बहन NBHM को मुख्य उद्देश्य किसान न की आमदनी न रोजगार की बढ़ोतरी का लेना मधुमक्खी पालन उद्योग को संपूर्ण विकास खेतीहर न गैर खेतीहर ख आजीविका मुहैया करानू न खेती न बागवानी का उत्पादन का प्रोत्साहित करनू छे। एक साथ है शहद उत्पादन वाला जिला न प्रांत में सभी तरह का आधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण लेब स्थापित करनू जेकासी सभी शहद उत्पाद की शुद्धता की जांच हुई सक। सभी शहद उत्पादन की संभावना वाला क्षेत्र में शहद कॉरिडोर विकसित करनू। कृषि उद्यमी न कृषि स्टार्टअप का शहद उत्पादन गतिविधि से जोड़नू। शहद उत्पादन प्रसंस्करण न शहद व्यापारी न निर्यातक का बीच व्यापार समझौता कराणु। साथ ही मधुमक्खी पालन का जरिया नारी सशक्तिकरण न कई महिला न अपनी स्व सहायता समूह न किसान उत्पादक संघ मधुमक्खी सहकारिता समूह न समिति को गठन का जरिया अपना संस्थागत विस्तार करने में सहायता मिलज। तब है बहनों आप भी मधुमक्खी पालन करी खन लाभ जरूर कमाऊजो। न भाई बहन हो ये तो थी आपकी न हमारी आपसी बातचीत न कार्यक्रम का आगे बढ़ावांज न सुनांज ई महत्वपूर्ण भेंट वार्ता जेको विषय छे गर्मी में कपास की उन्नत खेती। इना विषय पर जानकारी दे रहा ग्राम धनगांव का प्रगतिशील कृषक श्री उमाशंकर पटेल न इनका से बातचीत करी रही बहन निरूपमा मिश्रा।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों गर्मी में कपास की उन्नत खेती विषय पर बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है धनगांव के प्रगतिशील कृषक श्री उमाशंकर पटेल जी। उमाशंकर पटेल जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: उमाशंकर पटेल जी जैसे कि हमारा विषय है गर्मी के कपास की उन्नत खेती तो ये गर्मी का कपास आप कितने वर्षों से ले रहे हैं?
2: मैम हम गर्मी का कपास 20 वर्षों से इसका उत्पादन ले रहे हैं।
1: अच्छा तो इस गर्मी के कपास के लिए आप खेत को किस प्रकार से तैयार करते हैं और इसका समय कब से शुरू होता है?
2: मैम गर्मी के कपास के लिए हम खेत की तैयारी अप्रैल माह से चालू कर देते हैं। सर्वप्रथम हम खेत में कल्टीवेटर करवाते हैं

0: और कल्टीवेटर करवाने के बाद एक माह बाद हम खेत में रोटावेटर या बखर का उपयोग करते हैं, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाती है।
1: जी, मतलब आप लगभग एक माह तक खेत को खुला छोड़ते हैं।
0: जी मैम।
1: अच्छा, इसकी खेती के लिए आप मिट्टी परीक्षण करवाते हैं क्या?
0: हाँ मैम, इसकी खेती के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारी निमाड़ क्षेत्र की मिट्टी में लगातार उर्वरक का उपयोग करने से और कुछ कीटनाशक और हर्बिसाइड का उपयोग करने से जमीन बंजर होती जा रही है। तो हम हर तीसरे साल मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं और जिन पोषक तत्वों की कमी आती है उन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, और जिससे अच्छा उत्पादन बढ़ता है।
1: जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप कपास की बोनी के पहले मिट्टी परीक्षण करवाते हैं, और इसकी उपयोगिता भी किसान भाई जानते होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त रहती है।
0: निमाड़ क्षेत्र के लिए उष्ण जलवायु कपास की फसल के लिए उपयुक्त तो होती है, और मृदा में काली मृदा सबसे अच्छी मृदा होती है, और कपास की फसल के लिए पीएच मान होता है 5.5 से 8.5 सर्वोत्तम होता है। और जब कपास की बुवाई करते हैं उस समय तापमान होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, और जब कपास की वानस्पति वृद्धि होती है उस समय 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, और जब कपास की फसल पकते समय तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए।
1: तो इस हिसाब से अभी जो मई का महीना है वो इसकी बोने के लिए उपयुक्त है।
0: कपास की बुआई 15 मई से 30 मई के बीच में की जाती है, उस समय यदि बुआई की जाती है तो कपास का उत्पादन ज्यादा मिलता है। यदि कपास की बुआई लेट होती है तो ज्यादा पानी गिरने से कपास का विकास हो नहीं पाता है और उसका सीधा सीधा उत्पादन पे प्रभाव दिखता है, इसलिए कपास की सर्वोत्तम बुआई का समय है 15 मई से 30 मई के बीच में।
1: जी, तो ये तो हो गई जलवायु, मिट्टी और इसके कपास के बोने की समय की बात। अब हम बात करते हैं कि जब हम कपास को बोते हैं तो बोने के लिए बीज आप तो कहाँ से लेते हैं, या ये बीज आप घर पर तैयार करते हैं या कि ये बाजार से लाते हैं आप?
0: हम कपास के बीज बाजार से खरीद के लाते हैं। हमारे पास में खंडवा मार्केट है, सनावत मार्केट है, खरगोन मार्केट है, आसपास के मार्केट से ही हम बीज खरीदते हैं, और अलग अलग कंपनियों के बीज होते हैं।
1: तो पटेल जी, निमाड़ क्षेत्र के हिसाब से कपास की किस किस्म का आप बुआई के लिए चुनाव करते हैं?
0: मैम, निमाड़ क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम कुछ वेराइटियां हैं, जैसे कि 659 है, मोक्ष है, आशावन है, जम्बो है, भक्ति है, जादू है, एटीएम है, एक्स है, सुपर कार्ड है और गोल्ड कार्ड है। यह वैरायटी निमाड़ क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी है और इसका उत्पादन भी पर्याप्त है।
1: जी पटेल जी, जैसे कि आपने कपास की जो किस्म बताई है, तो यहाँ मैं
0: हाँ
1: ये पूछना चाहती हूँ कि कपास का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? कपास कितने प्रकार का होता है?
0: मैम, कपास दो प्रकार का होता है, एक देसी कपास होता है और एक अमेरिकन कपास होता है, और भारत में सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास ही लगाया जाता है।
1: जी, और जो एक बीटी कपास होता है वो कपास की किस किस्म के अंतर्गत आता है?
0: बीटी कपास मैम, जैसे अभी मैंने तो जो किस्म बताई थी आपको, मोक्ष, जम्बो और 659 और अन्य किस्म बताई थी, ये
1: जी
0: सभी बीटी कपास के अंदर ही आती हैं।
1: जी पटेल जी, अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम कपास की बोनी करते हैं तो
0: जी
1: बोने से पहले क्या बीज का बीजोपचार करते हैं?
0: मैम, बोने से पहले बीज उपचार नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी कपास को उत्पादन करके बीज मार्केट में देती है वो कंपनी के द्वारा ही बीज उपचार करके बीज पैक करके दिए जाते हैं।
1: जी, मतलब बीजोपचार आपको नहीं करना पड़ता।
0: हाँ मैम।
1: अब हम पटेल जी जानना चाहते हैं कि बीज बुआई के कितने दिन बाद आप निंदाई गुड़ाई का कार्य करते हैं, या खरपतवार का प्रबंधन आप किस प्रकार से करते हैं?
0: खरपतवार का प्रबंधन के लिए हम जैसे कि बुवाई के पहले एक बेसालिन आता है उसका उपयोग करते 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करते हैं, और कुछ अन्य केमिकल आते हैं जैसे कि एला क्लोर आता है, डाई यूरान आता है, इनका उपयोग अंकुरण के पहले और बुवाई के बाद करते हैं, और जब निंदाई गुड़ाई का समय आता है कपास की बुवाई के 30 से 35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई का समय आता है।
1: मतलब बुआई के करीब 30-35 दिन बाद आप पहली निंदाई गुड़ाई करते हैं,
0: जी मैम।
1: इसके बाद और कब कब आप करते हैं निंदाई गुड़ाई?
0: इसके बाद में 15 से 20 दिन बाद दूसरी बार निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद जब कपास बड़ा हो जाता है तो बेलों के द्वारा जो छोटा बखर आता है
1: जी
0: उससे खेत में चलाया जाता है, तो जो खरपतवार रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में निंदाई गुड़ाई कम से कम लगती है।

0: दो से तीन बार निराई गुड़ाई होती है।
1: जी पटेल जी, जैसे ये गर्मी का कपास है, तो गर्मी के कपास में सिंचाई की आवश्यकता भी बहुत रहती है, तो इसमें सिंचाई आप कब कब करते हैं और किस विधि से करते हैं?
0: सिंचाई कपास बुवाई के पहले दिन से प्रतिदिन गर्मी के माह में सिंचाई करना पड़ता है। और सिंचाई की दो विधियां होती है, एक नाली विधि और एक ड्रिप विधि। खुले खेत में नालियों के द्वारा पानी दिया जाता है, और ड्रिप विधि के द्वारा जिसके द्वारा खेत में पाइप बिछाया जाता है और उसमें ड्रिप को जोड़ा जाता है और ड्रिप के द्वारा सिंचाई की जाती है प्रतिदिन।
1: आप किस विधि का उपयोग करते हैं
0: ड्रिप विधि का हम उपयोग करते हैं।
1: और आपके पास सिंचाई के क्या क्या साधन हैं?
0: हमारे पास सिंचाई के साधन कुआं है और ट्यूबवेल है।
1: जी, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी आप कपास को दे पाते हैं।
0: हाँ मैम।
1: जी, अब कपास की फसल में बात आती है इसके वृद्धि और विकास के लिए खाद और उर्वरक देने की,
0: हाँ
1: तो
0: मैम।
1: खाद और उर्वरक आप कब कब देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं, प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा लगती है?
0: मैम, खाद का उपयोग हम खेत की जब तैयारी करते हैं अप्रैल अप्रैल माह में, उस समय हम 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग करते हैं। और उर्वरक का उपयोग हमारी फसल बुवाई के एक महीने बाद, जैसे कि जुलाई माह में यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, जिसमें यूरिया 20 से 25 किलोग्राम और डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करते हैं। और फिर इसके बाद में 20 से 30 दिन बाद फिर हम एनपीके, जैसे कि 12 32 16 और इसके साथ में यूरिया और कुछ अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं और इसका उपयोग हम करते हैं।
1: जी,
0: और इसके बाद जब खेत में डेंडू बनने लग जाते हैं, घेटे का साइज थोड़ा बनने लग जाता है, उस समय हम पोटाश का उपयोग करते हैं, जिससे पोटाश के उपयोग करने से घेटे का साइज भी बढ़ता है, वजनदार होता है और कपास में चमक भी अच्छी से रहती है।
1: जी तो जैसे कि आपने बताया कि आप खेत की तैयारी के समय 20 टन खाद देते हैं, तो
0: हाँ मैम।
1: ये क्या गोबर की सड़ी हुई खाद होती है या कंपोस्ट खाद होती है?
0: ये मैम गोबर की सड़ी हुई खाद होती है जो घर पे ही तैयार होती है मैम।
1: जी, और जो बाद में आपने जो पोटेशियम और ये यूरिया और इनकी जो मात्रा बताई, तो कितनी कितनी मात्रा में आप इसको देते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से?
0: मैम यूरिया पहली बार में 20 से 25 किलो देंगे और इसके बाद जब 20 से 30 दिन बाद देंगे तब और 20 से 25 किलो और एक बार यूरिया दिया जाएगा। और डीएपी हम एक बार देते हैं जुलाई महीने में 50 किलो, और फिर इसके 20 से 25 दिन बाद एनपीके डालते हैं 30 से 35 किलोग्राम, और साथ ही साथ इसके साथ कुछ अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाले जाते हैं।
1: जी, तो ये तो आपने बताई खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात। अब पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कपास जो होता है गर्मी का, उसकी किस अवस्था में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है?
0: हमें कपास को सबसे ज्यादा फ्लावरिंग अवस्था में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है,
1: जी
0: क्योंकि उस समय यदि ज्यादा वर्षा होती है तो पूरी फ्लावरिंग नीचे ड्रॉप हो जाती है, जिससे उत्पादन पे प्रभाव दिखता है। तो उस समय हमें कुछ खाद, जैसे कि ऑर्गेनिक पोटास हुआ, पोटेशियम हुआ और कुछ कंपनियों के अलग अलग जैसे पेटला ब्यूटाजोल हुआ, इनका स्प्रे करना चाहिए, तो जो फूल होते हैं वो ड्रॉप नहीं होते हैं और फूल से डेंडू बन जाते हैं, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
1: जी अब उमाशंकर पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं गर्मी का जो कपास है, उसको कौन कौन से रोग और कीट प्रभावित करते हैं और इनका प्रबंधन आप किस प्रकार से करते हैं?
0: गर्मी की कपास में सबसे ज्यादा लटे आती हैं, अमेरिकन लट आती है और एक गुलाबी सुंडी होती है जिसे पिंक बॉलवर्म बोलते हैं। यह फल पकते समय फल को खाने लग जाता है। और इसके अलावा कुछ कीट और आते हैं, जैसे रस चूसे कीट होते हैं, जैसे जेसिड बोलते हैं, व्हाइट फ्लाई और रेड कॉटन बग होते हैं, इनसे भी कपास को बहुत ज्यादा हानि होती है। और इसके अलावा कपास में कुछ अन्य रोग लगते हैं, जैसे कि झुलसा रोग हुआ, ब्लैक आर्म रोग हुआ और उकट्टा रोग हुआ, इनसे भी कपास की बहुत ज्यादा नुकसानी होती है। और हमें इनके रोकथाम के लिए मेनकोजिप का उपयोग कर सकते हैं और मेटालेक्सिल का उपयोग कर सकते हैं और कुछ अन्य कंपनियों के जो फंगीसाइड है उनका उपयोग किया जाता है रोगों के नियंत्रण के लिए। और जो कीट होते हैं इनके नियंत्रण के लिए इमिडा का उपयोग किया जाता है, डाइमेथोएट का उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ प्रोपेनो प्लस साइपर का उपयोग किया जाता है, एसीफेट का उपयोग किया जाता है और मोनोकोटोफास का भी उपयोग किया जाता है।
1: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि जो इसमें कीट होता है पिंक वॉलवर्म, तो ये
0: जी
1: जब कपास में घेटे आते हैं तब ये
0: हाँ
1: उसको प्रभावित करता है या उसको खाता है, तो बाकी

0: रोग और जो कीट हैं वो कपास की किस किस अवस्था में इसको नुकसान पहुंचाते हैं?
1: जैसे मैम जेसी ढुआ, व्हाइट फ्लाई और रेड कॉटन बग हुआ, ये कपास की सभी अवस्थाओं में ही रहता है। जैसे शुरुआती अवस्था 1 महीने बाद से यदि देखा जाए तो तब से देखने को मिल जाता है। तो इसे पहले बुआई के 30 से 40 दिन के अंतर पर पहला स्प्रे करना पड़ता है और उसके बाद 12 से 15 दिन की अवस्था पे स्प्रे करता रहना चाहिए, जिससे इन सभी कीटों से, रस चूसक कीटों से राहत फसल को मिलती है।
0: जी पटेल जी, गर्मी के कपास उत्पादन में किसान भाइयों को और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे इससे भरपूर उत्पादन ले सकें?
1: किसान भाइयों को गर्मी के कपास में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बुआई का समय सही होना चाहिए। यदि बुआई का समय ज्यादा जल्दी हो जाएगा तो उससे भी कपास की फसल नष्ट हो जाती है, डेंडू सड़ जाते हैं। और यदि बुआई लेट होती है तो उससे क्या होता है कि उत्पादन पे उधर भी प्रभाव दिखेगा। कपास ज्यादा पानी गिरने से, वर्षा होने से कपास का विकास नहीं हो पाता है, जिससे कपास में डेंडू कम लगेंगे और उत्पादन भी कम होगा। और इसके बाद में सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है खरपतवार। यदि कपास की फसल में खरपतवार ज्यादा होंगे तो कपास में रोग और कीट ज्यादा आएंगे, जिससे हमारा उत्पादन पे प्रभाव दिखेगा। और कीट नियंत्रण और रोगों का नियंत्रण भी करना चाहिए और सिंचाई समय समय पर करना चाहिए। सिंचाई का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। और किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदना चाहिए और किसान भाइयों को बीज के मामले में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए।
0: जी, तो इस प्रकार से आप जब खेती करते हैं पटेल जी, तो गर्मी के कपास से आपको प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन प्राप्त होता है?
1: गर्मी के कपास से हमें एक एवरेज होता है 6 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है, लेकिन मौसम के मार से किसानों को कभी कभी 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ भी उत्पादन होता है। लेकिन जब अच्छा मौसम, साफ मौसम रहता है तो किसान भाइयों को 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिलता है।
0: जी, और ये इस कपास की फसल के बीच में हम क्या कोई सह फसल भी ले सकते हैं?
1: जी मैम, ले सकते हैं। इसके साथ में बीच बीच में मक्का भी बो सकते हैं, जिससे पहले मक्के की तुड़ाई, हरी मक्के की तुड़ाई कर सकते हैं और जो मक्का भी रहेगा वो पशुओं को खिला भी सकते हैं।
0: जी, मतलब हमको तो उत्पादन मिल ही रहा है, साथ में हमारे पशुओं को भी चारे की प्राप्ति हो जाती है।
1: जी मैम,
0: जी, तो उमाशंकर पटेल जी, आपने हमें गर्मी के कपास की उन्नत खेती पर इतनी अच्छी जानकारी दी और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: भाई बहनों, अभी हमने सुनी ई भेंट वार्ता, विषय तो गर्मी में कपास की उन्नत खेती। इना विषय पर जानकारी दे रहा था ग्राम धनगांव का प्रगतिशील कृषक उमाशंकर पटेल ने, इनका सी बातचीत कर रही थी बहन निरूपमा मिश्रा। भाई बहनों, अब समय छे आज का कृषि समाचार नको। तो आज का कृषि समाचार इना प्रकार सी छे। शासन ने धान की MSP में 72 रुपया की बढ़ोतरी करी। भाई बहनों, खरीफ सीजन की बुआई सी पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल समिति न किसान न का लेना फसल न की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को निर्णय कियो। धान का MSP में 72 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि करी गई। शासन को फोकस तिलहन दलहन न मोटा अनाज पर भी छे। सूरजमुखी, कपास, नाइजर सीड, तिल न अरहर जैसी फसल का MSP में भारी वृद्धि सी स्पष्ट छे कि शासन खेती का पैटर्न में बदलाव करी ख खाद्य तेल न दाल में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी सी बढ़ी रही। भाई बहनों, सूचना न प्रसारण मंत्री ने बतायो कि सामान्य धान की MSP 2441 रुपया प्रति क्विंटल सी ग्रेड ए धान की MSP 2461 रुपया होएगा। न ई तो था कृषि समाचार। न अब आपको बताई देवा खंडवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज न की भाव की जानकारी। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहा 4,500 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 8,011 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं न्यूनतम भाव रहा 1,880 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 2,440 रुपया प्रति क्विंटल। चना भाव रहा 5,000 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 5,521 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1,653 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 1,990 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर का न्यूनतम भाव रहा 5,000 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 7,051 रुपया प्रति क्विंटल। उपज की जानकारी का बाद अब समय छे मौसम की जानकारी को। आज सूर्योदय सुबह 5 बजे खनज

चालीस मिनट पर हुई हो न सूर्यास्त शाम 6:55 पर हुई हो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहे हो न रात को न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। मौसम की जानकारी का बाद आओ थोड़ो मनोरंजन अरु करांज न सुनांज एक अरु निमाड़ी लोकगीत जेका गायो बद्री प्रसाद शर्मा न साथी न।

भाई बहनोनी अभी हमने सुने हो बज्र प्रसाद शर्मा ने साथी नको गायल योनी माड़ी लोकगीत। न भाई बहनों अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा गया प्रश्न को उत्तर देना को। तो हमने आपसे प्रश्न करे थो कि सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा को काई नाम छे। न इना प्रश्न को उत्तर छे कपास सूत। इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज को कार्यक्रम को समय यहाँ ज पूरा हुई। तो आज्ञा दे आपकी बहन माधुरी सेन खर राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। और अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: हवा महल में आज प्रस्तुत है कुंभे श्रीवास्तव की लिखी नाटिका मंगल वरदान।

0: हैं? आप कौन हैं?
1: मैं लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसकी तुम आरती कर रहे थे।
0: लक्ष्मी देवी माँ, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।
1: मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गरीब दास, तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मांगो, क्या मांगते हो?
0: मैं क्या मांगूं देवी माँ? मैं
1: धन, संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूँ गरीब दास। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
0: लेकिन देवी माता, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मैं
1: अरे, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है गरीब दास? मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों चौंधिया रही हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो?
0: आपका रूप ही ऐसा है देवी माँ, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी कभी देखी नहीं।
1: घबराओ नहीं गरीब दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो जी चाहे मांग सकते हो।
0: देवी माँ, क्षमा करना, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का तनिक समय दीजिए।
1: गरीब दास, मैं तुम्हें रात भर का समय देती हूँ, खूब सोच लो। सुबह का सूरज निकलते ही मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी।
0: कृपा देवी माँ, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। धनिया, अरे ओ धनिया, है सो गई? अरे उठ तो है, अरे ये तो बेहोश पड़ी है, लक्ष्मी जी को देख के बेहोश हो गई। धनिया, ओ धनिया, अरे आंखें खोल धनिया।
2: अरे वो औरत गई?
0: औरत? अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी माँ।
2: लक्ष्मी जी?
0: हाँ माता लक्ष्मी, हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी।
2: वरदान?
0: हाँ, सवेरे फिर आएंगी, पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे?
2: हाय दया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मुरझा आ गई।
0: अरे मेरा भी तो यही हाल था धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: मैं बताऊं?
0: ओहो तो जल्दी से बोल।
2: सुनो, तुम कहते थे ना, हाँ? मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? तो मांग लो झुमका।
0: ओफो, तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
2: हाँ हाँ, वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देते हो पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
0: अरे धनिया, ए धनिया, तू समझती क्यों नहीं, देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों ना मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। है झुमका तो बस कानों में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा।
2: झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से?
0: अरे धनिया, तू कैसी बातें करती है, देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा? राम राम राम, अरे भगवान, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ।
2: क्या सोच रहे हो?
0: मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है, गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं, क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और 4 दीवारों वाला घर मांग लें। बस हम धूप में ना जलेंगे, ना पानी में भीगेंगे, ना सर्दी में ठिठुरेंगे।
2: हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची, घर।
0: हाँ, देवी जी आएंगी तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ, हमें घर दे।

0: एक छत वाला, चार दीवारों वाला एक घर, ठीक है ना धनिया?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, घर।
0: हाँ तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ। देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है।
1: एक बात कहूँ?
0: बोल।
1: लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा?
0: जो मांगेंगे वही मिलेगा।
1: तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों ना मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो?
0: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ याद आया, एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था, मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं।
1: अच्छा?
0: अरे हर गली फू फू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूं कि हे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीब दास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और मेरी धनिया, हाय मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी।
1: और मेरे सोने के झुमके?
0: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरे लिए सोने का चंदर हार ले दूंगा।
1: हाय सोने का चंदर हार?
0: हाँ चंदर हार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी, सो जा।
1: अरे हाँ हाँ तो फिर तुम भी सो जाओ, जल्दी से सो जाओ।
0: थानेदार क्या, थानेदार तो सलाम मारेगा।
1: सो जाओ सो जाओ।
0: धनिया, धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद क्यों नहीं आ रही? धनिया मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है।
1: अब क्या सोचने लग गए?
0: सोच रहा हूँ देवी जी रोज रोज तो वरदान देने नहीं आएंगी, जो कुछ मांगना है एक ही बार मांग लो, कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो।
1: ए? कलेक्टर साहब से भी बड़ी?
0: हाँ धनिया, तुझे याद है एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे, इस सड़क से एक मोटर निकली थी, मोटर में झंडा लगा हुआ था, और सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी, और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था, मालूम है कौन था वो?
1: कौन था?
0: सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास चार मोटरें हैं, चार कोठियां हैं, चार बीवियां हैं, चार
1: हाय दया चार,
0: हाँ धनिया सब कुछ चार चार। अरे रे क्या हुआ धनिया, क्या हुआ?
1: तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी चार बीवियां रखोगे।
0: नहीं रे, मेरी तो एक धनिया ही चार के बराबर है। मेरा मतलब था धनिया, मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी चार मोटरें होंगी, चार कोठियां होंगी, चार
1: हाय सब कुछ चार चार, मेरे झुमके भी चार चार,
0: तेरे झुमके भी चार चार,
1: और चंदर हार भी चार चार,
0: वो चंदर हार भी चार चार।
1: हाय हाय।
0: लेकिन धनिया सुन, अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले।
1: अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते।
0: सारी रात गुजर गई, हम सो भी ना सके। देवी लक्ष्मी माँ आप आ भी गई?
2: हाँ मैं आ गई गरीबदास, मांगो क्या मांगते हो?
0: देवी माता क्षमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीबदास?
0: मैं सच कह रहा हूं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गरीबदास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
2: लेकिन क्यों?
0: देवी जी, देवी माँ, मोटर बंगला, हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं

तके, आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है तो यह सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा, हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी।

0: अपनी ओर से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी।
1: ये क्या है देवी?
0: ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता। इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती। इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती। इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति और संतोष का उजाला होगा। अंधेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिट्टी के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे। ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा। इसे संभाल के रखना।
1: धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता धन्य हो। मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा।
0: तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बने, ज्ञानी बने, ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे, तभी वास्तव में इस देश में दिवाली होगी। दिवाली।

मंगल वरदान हवा महल के अंतर्गत अभी आपने कुंभे श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत यह नाटिका सुनी।

ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नरानिया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धड़कन से, कुमार सानू की आवाज में, समीर के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कसूर फिल्म का गीत। उदित नारायण अलका याग्निक का गाया, समीर की लिखे बोल है, धुन बनाई है नदीम श्रवण।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में कसूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत के बोल लिखे थे, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

लीजिए, अंतराल का वक्त खत्म हुआ और हम फिर से लौट आए हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं तरकीब फिल्म से, जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में, निदा फाजली का लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत पद किया गीत।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शेंडे, कलापनी कोमाकली की आवाजों में पहेली फिल्म का गीत। संगीत पर किया है इस गीत को MM करीम ने।
1: कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, कंगना रे कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, जब चलूं तो छन छन छन के अंगना रे, जब चलूं तो छन छन छन के अंगना रे, जब चूड़िया तनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जावे सर।

पहली फिल्म का गीत सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और कलापनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत गली में चांद निकला, जख्म फिल्म से, अलका याग्निक की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत MM करीम का ही है, फिल्म का नाम जख्म।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, एमएम करीम का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात

0: अपने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का

0: निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया रास्ता फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का लिखा गीत एंड दत्ता का संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आरजी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा, फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है घर। गुलजार की बोल आर डी बर्मन का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पारिजात की खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सहने गुलशन में फूलों के हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कनों की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है। सच कहूं बुझती नहीं ये शम्मा, जले जाती है।

नाशाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम से आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू शाखों पे तराना होता है।

आने से समा और भी पुरनूर होता गया, रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ, ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात। इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है, ये अफसानाए मोहब्बत हरफों में कब बयां होता है।

रफ्तार धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं। शाख गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें। ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए

0: कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest-growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA 5 years ahead of schedule. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in

मीडियम वेव 188,500 AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।